FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:58 व 36 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये जिंदगी का पहिया गोल घूमता है, कभी सुख है तो कभी दुख है। कभी कभी ऐसा मोड आता है जब इंसान खुद को अकेला सा महसूस करता है, चारों तरफ धुंध होती है, दिल किसी न किसी सहारे को ढूंढ रहा होता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा खटखटाने की जरूरत है, उस ऊपर वाले का दरवाजा, क्योंकि जब वो हाथ थाम लेता है तो जिंदगी का हर कांटा फूल में परिवर्तित हो जाता है।

दोस्तों, हम सब इंसान हैं। कमियां, गलतियां या भूल करना इंसान की फितरत है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसी सत्ता है जो हमारी सारी कमियों को भूल जाती है, सारी गलतियां माफ़ कर देती है, सारी भूलों को भूलकर हमें गले से लगा लेती है। वो है उस परम पिता परमेश्वर की असीम दया, उनकी करुणा। जैसे एक माँ अपने बच्चे की नादानी भूलकर उसे गोद में ले लेती है, ठीक वैसे ही ईश्वर भी हमारे अवगुणों को नहीं बल्कि हमारे भीतर के सच्चे समर्पण को ही देखता है।

चित्रकूट जाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी, जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई, जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे, जो कालक्रम में लोप हो गया था। इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर शोभा जोशी का था, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज विक्रमी संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और अब बारी है आज के अपडेट्स की।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह का आज आयोजन किया गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य केंद्र ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारत को असीमित ऊर्जा की पेशकश रहा। अगले 9 दिनों तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

शाम 5 बजे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह का प्रसारण दिल्ली से किया जाएगा।

गीता संदेश में आज सुनिएगा श्रीमद् भगवद् गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 1-4 की व्याख्या। प्रस्तुति डॉक्टर रामचंद्र की होगी और समय रहेगा शाम 6:20।

सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय रहेगा प्रातः 10 बजे। गैर फिल्में नगमे गीत और कव्वालियां हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:45 पर कार्यक्रम गुलदस्ता के अंतर्गत। रात्रि 8 बजे कुछ बातें और कुछ गीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें सुनिएगा रात्रि 10 बजे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र यानी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आज प्रसारित होने वाले बाकी के कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first Civil Investiture Ceremony for 2026 to be held at Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Bhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Bhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjatiya Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights. External Affairs Mr. Dr. S. Jayashankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why the counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices.
4: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
3: Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jayashankar said, this visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times. He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. U.S. President Donald Trump dialed Secretary of State Marco Rubio during an event celebrating America's 250 years of independence at the Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. U.S. President described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated that ties between the two nations had never been so closer. He even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%.
5: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my fan.
3: U.S. President's remarks came amid Mr. Rubio's four-day visit to India. Mr. Rubio met Prime Minister Modi on Saturday, followed by his meetings with External Affairs Minister S. Jayashankar and National Security Advisor Ajit Dobhal yesterday. The National Testing Agency NTA has postponed the Common University Entrance Test undergraduate 2026 examinations, scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha or Bakrid holiday as per the government notification. The agency informed that revised exam dates will be announced soon. The Central Board of Secondary Education CBSE has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 examinations by one more day until today. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs at the Eden Gardens in Kolkata last night. Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders, KKR. In reply, KKR scored only 163 runs in 18.4 overs. Put into bat, Delhi Capitals posted 203 runs for the loss of 5 wickets in the stipulated 20 overs. Early in the day, in another fixture, Rajasthan Royals defeated host Mumbai Indians by 30 runs at the Wankhede Stadium. And that is the end of this news bulletin.
6: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
3: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्धशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्धशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंको जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ,
5: ये क्या हुआ? अरे बच्चों, बच्चों, बच्चों,
6: फट जाएगा, फट
5: जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट
6: जाएगा।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
7: Yes, come in.
9: Sir.
7: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
7: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगा।
8: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
7: हाँ हाँ, कहो।
8: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
7: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
8: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
7: गो अहेड यंग मैन।
8: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
5: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
5: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
9: जी जनाब।
4: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
8: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
5: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन, निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
5: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
5: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
5: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोग्रांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोग्रांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया।

0: की शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार हैं राम कुमार जैनवाला।

मन मत मरवाओ मात पिता।

Viernes. ओ फर्क नहीं लड़के लड़की में, मत ना गलत लुभार करो, एरा भरू है।

उसने ऐसा काम करया, अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई जीना कती हराम करया। इंदिरा गांधी भी लड़की थी देश स्वर्ग का धाम करया, कल्पना चावला भी

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: हिंदुस्तान आजाद देश की ताकत यो

0: कार्यक्रम का नाम है बाजे नगाड़ा और हमारे आज के कलाकार हैं राम कुमार जुएनवाला।
1: इसको जरूर मिटाना से जो रीत चाल रिया

ऐसा जुल्म करे ना बेटी हाड़ा जोड़े हाथ कुकर जी वह लड़की लोगो जिनकी उल्टी फिरे बरात कुकर जी वह लड़की लोगो जिनकी उल्टी फिरे बरात रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे

0: इसके साथ ही बाजे नगाड़ा कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में।
1: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
3: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
6: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 का करोड़ तक बढ़ाने का काम।
3: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दीपांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर दीपांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
8: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
8: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
9: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series People's Padma on Akashwani.
10: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
11: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
12: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
1: In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune to 100.1 Akashwani Gold today from 9:10 a.m. onwards. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
5: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri hai nate.
13: As the Home Minister of the Narendra Modi government, I want to make it clear that no restriction of the UCC will apply to the tribal world or any tribal individual. No violation of tribal rights will occur because of the UCC. In the two states where the Bharatiya Janata Party is in power, Gujarat and Uttarakhand, we have implemented the UCC, and by making special provisions, the Narendra Modi government has worked to keep all the tribal communities out of the purview of the UCC.
5: Narendra Modi sarkar ne kiya hai.
14: The Home Minister also said that the tribal welfare budget, which stood at 28,000 crore rupees during the Congress-led government, has been increased to 1,50,000 crore rupees under the Narendra Modi government. Petrol price has been hiked by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre today, marking the fourth hike in 2 weeks. With this revision, petrol will now cost 102 rupees 12 paise per litre in Delhi, while diesel will now cost 95 rupees 20 paise per litre in the national capital. The National Testing Agency NTA has postponed the Common University Entrance Test undergraduate 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha or Bakr Eid holiday as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education CBSE has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day. Until today, CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit the applications accordingly. It stated that the start date for accepting evaluation requests shall be communicated soon. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
15: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
14: The External Affairs Minister said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. He said many convergences make both nations effective strategic partners in multiple domains. Mentioning the visit of US Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jaishankar said this visit highlights the significance of India-US ties in contemporary times.
15: Prime Minister Modi and President Trump set out a pathway for the further development of our enduring partnership. Their goal was to advance the aspirations of our people for a bright and prosperous future while also serving global good.
14: U.S. President Donald Trump dialed U.S. Ambassador to India Sergio Gaud during an event celebrating America's 250 years of independence at the Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Mr. Trump described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated the ties between the two nations had never been so close. Mr. Trump said he loves India and even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%. The U.S. ambassador held his phone to a microphone for the audience to hear Trump's remarks.
16: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister Modi. He's great. He's my friend. I just want to say
14: the event was graced by External Affairs Minister S. Jaishankar, U.S. Secretary of State Marco Rubio, and U.S. Ambassador Sergio Gaud. U.S. President's remarks came amid Secretary of State Marco Rubio's four-day visit to India. U.S. President Donald Trump said that he has told his representatives not to rush into any deal with Iran as his administration played down hopes of an imminent breakthrough in the three-month-old war. He said that any future deal with Iran under his administration would involve no financial concessions and would be fundamentally different from the agreement reached during former U.S. President Barack Obama's tenure. He also criticized the Obama-era Iran nuclear deal and claimed his proposed agreement would prevent Tehran from obtaining nuclear weapons and the deal will differ from the one crafted by former US President Barack Obama. Indian High Commissioner to Bangladesh Pranay Verma paid a farewell call on Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman yesterday. According to a post by the High Commissioner in India and Bangladesh on social media platform X, the Prime Minister thanked Mr. Verma for his contributions towards strengthening India-Bangladesh relations and conveyed best wishes for his next assignment. Mr. Verma reaffirmed India's willingness to deepen multifaceted engagement with Bangladesh for the mutual benefit and shared prosperity of the people of both countries. The annual five-day Hajj pilgrimage commences today amidst regional tension in West Asia as more than 1.6 million Muslims from across the world, including India, begins their journey from the holy city of Makkah to assemble in the tent city of Mina in Saudi Arabia. They will spend the night there and move towards the plains of Arafat at dawn tomorrow for the day's main ritual of Hajj reciting prayers. About 1,75,000 pilgrims from India are participating in this year's Hajj pilgrimage. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs at the Eden Gardens in Kolkata last night. Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders, KKR. In reply, KKR scored only 163 runs in 18.4 overs. Put into bat, Delhi Capitals posted 203 runs for the loss of 5 wickets in the stipulated 20 overs. Early in the day, in another fixture, Rajasthan Royals defeated host Mumbai Indians by 30 runs at the Wankhede Stadium. India Meteorological Department has issued an orange alert for heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab, parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha and Telangana also likely to witness severe heat wave conditions during the day. In a bilingual live phone-in program, Public Speak tonight at 9:30, we will bring an insightful discussion on one-stop digital support for senior citizens, Jeevan and Shatayu apps with Monali P. D. Dakte, Joint Secretary, Minister of Social Justice and Empowerment. During the program, listeners can ask questions on recently launched apps by the Minister of Social Justice and Empowerment to support senior citizens in accessing healthcare information on welfare schemes and ensuring their safety and care. To participate, simply dial the telephone number 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
17: Thank you, Abhishek. Talks between External Affairs Minister S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio is covered prominently by the dailies. India and U.S. reform strategic ties, push trade, energy deals, leads the Asian age. Rubio, Jaishankar stressed need for unimpeded maritime trade, writes the Hindu. The statesman, quoting U.S. Secretary of State Marco Rubio, says U.S.-Pakistan alliance not at the expense of ties with India. West Bengal orders setting up of holding centers for illegal foreigners awaiting deportation, reports the Tribune. The Pioneer, in its editorial piece, states addressing India's job crisis. The paper says the employment question is not merely economic, it is deeply linked to dignity and aspiration of the youth and affects national confidence. Any nation that aspires to be superpower must be backed by its youth that is meaningfully employed and has a positive mindset. Indeed, India is one of the youngest nations of the world and has a sizable youthful energy. But if it is not engaged in constructive work, there is a high chance of it going wayward. In keeping with his commitment to provide jobs, Prime Minister Narendra Modi presided over the 19th edition of the Rozgar Mela. Quad grouping is vital, says Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi, reports the Hindu. And finally, Delhi's shopping problem just became a business. Well, the Pioneer reports that Carryman, which began operations in Lajpat Nagar in April, offers shoppers a trained assistant who accompanies them through the market, carries their bags, holds their spot in queues, helps them navigate stores. And with that, it's back to you, Abhishek.
14: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. UN Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from mandate of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre. National Testing Agency postponed CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम सुबह सवेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों, सुबह की ये जो पहली किरण होती है ना, अपने साथ एक अनोखा सा सुकून लेकर आती है, एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुकून लेकर आती है जो हमें खुद से जोड़ देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अकेले रहना उदासी की निशानी है। हाँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती। जरा रुककर आप ही सोचिए, अकेले रहना तो एक उत्सव है। जब हम अपने साथ होते हैं तो हमें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। आप अपने खुद के राजा या रानी हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अकेले रहने का मतलब तन्हाई नहीं होता, बल्कि खुद से मोहब्बत करना होता है। अपनी चाय का पहला घूंट अपने ही साथ मुस्कुरा कर लेना, ओए हाय क्या बात है। बिना किसी पाबंदी के अपने सपनों के बारे में सोचना, अपनी ही धुन में मदमस्त होकर गाते चले जाना। सच मानिए, इसे जो मी टाइम कहा जाता है ना आजकल, इस मी टाइम से बढ़कर ना दुनिया में कोई खुशी नहीं है। हम अपने आप में ही पूरे होते हैं। अपने आप को पूरा करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं होती उस वक्त।

तो क्यों ना आज इस सुबह का पहला गीत हम अपने ही नाम कर दें, खुद को थोड़ा और जाने, थोड़ा और सवारे और कहें कि हाँ, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, बेफिक्र हैं, अलबेले हैं।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में वक्त है आज के प्रश्न का। तो हमारा आज का प्रश्न है, उपन्यास 5.1 के लेखक कौन है? उपन्यास 5.1 के लेखक कौन है? आपको अपना उत्तर टेक्स्ट मैसेज के जरिए 9466021336 पर देना है। जल्दी से हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और बन जाइए हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा। प्रश्न एक बार फिर से दोहराई देते हैं, उपन्यास 5.1 के लेखक कौन है? इसका एक छोटा सा हिंट भी हम आपको दे देते हैं, इसी उपन्यास पर हिंदी बॉलीवुड सिनेमा में एक फिल्म भी बनी है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: ये आकाशवाणी है,
6: हर पल आपके साथ।
5: समाचार हो या सदाबहार गीत,
6: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
5: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
6: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
5: आकाशवाणी।
7: श्रोताओ, आज रासबिहारी बोस जयंती भी है, तो रासबिहारी बोस हमारे देश के एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 25 मई को हुआ था और 1886 में बंगाल में हुआ था। ये उन चुनिंदा क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशी सरजमी पर भी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी।

शुरुआती शिक्षा सुबलदहे में हुई और बाद में फ्रांस के अधीन रहे चंद नगर में डुप्लेक्स कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। इन्होंने कॉलेज की शिक्षा पूरी होने के बाद एक क्लर्क की नौकरी भी की थी।

गदर आंदोलन की ये सूत्रधार थी। ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए भेष बदलकर 1915 में ये जापान चले गए, वहां की नागरिकता हासिल की और भारत की आजादी के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी जुटाया। जापान में रहते हुए 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। जनवरी 1945 को टोक्यो में इनका निधन हुआ। इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर जापानी सरकार ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया था।

श्रोताओ, आज 25 मई है और आज का दिन विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस खूबसूरत खेल की वैश्विक लोकप्रियता देखते हुए एकता और शांति के संदेश को सम्मानित करने के लिए इस दिन की शुरुआत की। फुटबॉल सिर्फ एक खेल ही नहीं है, बल्कि एक भावना है जो जाति, धर्म और देश की सीमाओं को तोड़कर लोगों को एक साथ लाती है। ये खेल अनुशासन, टीमवर्क और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना सिखाता है।

ये खेल हमें सिखाता है कि रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आएं, सामाजिक रूढ़ियां आएं, उन्हें फुटबॉल की तरह एक जोरदार लात मारिए और अपने रास्ते से हटा दीजिए।

जब एक खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरता है तो वो अपनी हर निराशा हर लाचारी को पीछे छोड़ देता है। खेल के प्रति जो ये जुनून है यही विश्व फुटबॉल दिवस की असली ताकत है।

फुटबॉल का खेल जो है ये हर उस इंसान का खेल है जिसके हौसलों में उड़ान है। ये गीत हमें बताता है कि जिंदगी की हर चुनौती को फुटबॉल की तरह समझो, फोकस करो और गोल पोस्ट की तरफ एक मजबूत लात मार दीजिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे गीत पूछ एक प्रश्न पूछा

था उपन्यास 5.1 के लेखक कौन हैं? आपको बताना था उपन्यास 5.1 के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है चेतन भगत।

5.71 चेतन भगत का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके नाम का भी एक बड़ा ही गहरा और मजेदार मतलब है, जो कि पूरी कहानी के संदेश को भी दिखाता है। IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्रों को नंबर्स की जगह GPA यानी कि ग्रेड पॉइंट एवरेज दिया जाता है, जो कि 10 में से होता है। 9 या 10 पॉइंट्स जिनको मिलते हैं वो तो टॉपर्स होते हैं, जिन्हें बहुत पढ़ने वाला बच्चा माना जाता है, लेकिन किसी किसी को 5 पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये वो छात्र होते हैं जिन्हें एवरेज यानी कि औसत माना जाता है। अगर किसी के GPA 5 या 5.2 या 5.6 इस तरह के नंबर आते हैं, इस तरह का ग्रेड आता है, तो उन्हें साधारण छात्र माना जाता है। और समवन का मतलब है कि कोई या एक आम इंसान। तो पूरे टाइटल का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा आम इंसान जिसके 5 पॉइंट आए हैं। इस उपन्यास का पूरा नाम भी इसी तरह से है, 5.71, और इसके नीचे टाइटल में लिखा हुआ है व्हाट नॉट टू डू एट IIT। चेतन भगत इस नाम के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा समाज और एजुकेशन सिस्टम उन्हीं बच्चों को सफल मानता है जो 9 या 10 पॉइंट लाते हैं, लेकिन ये कहानी IIT के उन 3 दोस्तों की है जो इस सिस्टम के दबाव में फिट नहीं बैठते और 5 पॉइंटर्स बनकर रह जाते हैं। इसके बावजूद ये कहानी दिखाती है या सिखाती है कि ग्रेड्स ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। इस उपन्यास पर एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी है जिसका नाम है 3 Idiots। यूं तो इस फिल्म के सारे ही गाने बेहद प्रसिद्ध हुए थे और लोकप्रिय भी थे। एक गीत हम आपको सुनवा चुके हैं, बहती हवा सा था वो। ये है दूसरा गीत, गिव मी सम सनशाइन। इस गीत के माध्यम से भी यही कहा जा रहा है कि हमें खुलकर जीने दो, जो है जितना है हम उसी में सब कुछ कर लेंगे।

हमारे इस प्रश्न का बहुत सारे श्रोताओं ने सही उत्तर दिया है और उनके नाम हैं गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अनाया अवाना और ओजस अवाना। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार कमारिया छत्तीसगढ़ से। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर। ललिता सिंह और भगवान सिंह शिलाई हिमाचल प्रदेश से। सरोज सैनी, राकेश सैनी, यादविंदर सैनी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन सौंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। बीपी गौतम एटा रोड गंज टुंडुवारा उत्तर प्रदेश से। तराई माल रायगढ़ से अंश साहू और निशु साहू। तन्मय सिंह, सिद्धांत सिंह शिलाई हिमाचल प्रदेश से। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले। लाडवा से चांद ढींगड़ा, ईशु और एमी। बोरसरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू और बीमा साहू। छत्तीसगढ़ बोरसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू। नाहन से योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर। धूलिया महाराष्ट्र से अशोक कवाड़े, आदित्य और दीपमाला कवाड़े। फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हेयांश कुमार चंदन सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से। टिया कृष्णा सोलन हिमाचल प्रदेश से। सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र से जगपाल हुड्डा, सानिध्य हुड्डा, सुनैना हुड्डा और समीक्षा हुड्डा। गांव पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा। गांव नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू। रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरशबद सिंह राहुल, योगी महल्ला बराड़ा जिला अंबाला से। अगला सही जवाब है आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर का, और इन्होंने हमें सही जवाब लिखकर भेजा है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी एमएलबी रोड ग्वालियर से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, धर्मी और सानवी के साथ समस्त छाबड़ा परिवार के सदस्य। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना ढींगड़ा, कृतिका विशु और विजय। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज, वंश और भुवेश कुमार काम्बोज। डॉक्टर सरोज शुक्ला, सुधा नारायण के हाली बेंगलोर से। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता और सुभाष योगी। माघेराम सैनी, पूनम सैनी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा। भुवन प्रकाश गौतम, श्रेय गौतम, गंज डुंडुवारा उत्तर प्रदेश से। मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार, योगेश और राहुल साहू। भरतराम पडोटी, जयंती और हेमंत पडोटी कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे और संदीप पाठे। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह महोबिया, कविता और पेंटर बाबू। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और राघव।
जमशेदपुर से हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और प्रिंस वर्मा। नजफगढ़ नई दिल्ली से सुमन, गौरव शर्मा और सौरभ शर्मा।

शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और निमित दिशानी, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार, कल्लन गज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना और हीना साहिद खोकर, बिलराम गेट कासगंज से एम असलफ एस सैफी, जैबुनिशा बेगम और सद्दाम सोनी, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े। अगला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, मोहिनी और ऋतिक ने, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव गरिमा, नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा से मास्टर अलीम मुजाहिद और नदीम पटेल, आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और इनके साथी, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा, जसपुर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दकी, नजमा बेगम सिद्दकी, संतोष नामदेव बन बघेरा दुर्ग से, हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे और सांगली से इन्होंने सही जवाब लिखकर भेजा है। अगला सही जवाब हमें मिला है मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी का, रेलवे रोड गंज डुंडुवारा से, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कमला और गीतिका भानु, मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, शुभम और राहुल धीमान, फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव संबलपुर कांकेर से। अगला सही जवाब देखते हैं किस श्रोता ने दिया है। ये है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निघट प्रवीण अब्बासी, शाहनवाज सरफराज और अब्बासी परिवार के सदस्य ऊपरकोट बुलंदशहर से, राजनांद गांव से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी और देवेंद्र प्रताप साहू के, इनके साथ हैं प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर मध्य प्रदेश से, गांव पंचायत पटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और अंजनी ज्योति वर्मा, जयश्री सुनील बेंगलोर से, सरोज शुक्ला भी इनके साथ हैं, बल्लारपुर जिला चंद्रपुर से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर और समीक्षा भारशंकर, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कलिप कपिल छिंका और पूजा परिहार ने सही जवाब लिखकर भेजा है। अगला सही जवाब गांव कलाना से राजस्थान से विक्रम, सचिन, योगेश और युधव कड़वासरा, सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई, जगदीश और हीरेन भाई। अगला सही जवाब हमें लिखकर भेजने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, बक्सर बिहार से राज एस डी अंसारी। अगला सही जवाब है संजीव अमन खुकड़ी करनाल से, इन्होंने सही जवाब लिखकर भेजा है। अगला सही जवाब है नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना, अनिल कटारी का पानीपत से, खैल बाजार पानीपत से इन्होंने लिखकर भेजा है। सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रश्मेश चंद्र चौहान, मोहिनी और कल्पित चौहान। अगला सही जवाब हमारे जिस श्रोता ने दिया है वो है मुरादाबाद गांव दूलापुर से मोहम्मद फरमान, बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गोरैया जलंधर से अशोक जाटव, राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, डोंडी लोहारा से प्रभा राधिका, शनि चौक खंडवा से अनीता और दुर्गा कुमारी,
जगाधरी से विनय मोहन खार और इनके साथी, सरिता मौर्य, गौतम बी प्रकाश, कुछ गौतम साईं विहार रामपुर से, गांव बांडीवाला फजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया और बेबी गरिमा बगड़िया के साथ हैं रजत, रादौर से राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा और साहिल पुजारा, अकरम हुसैन, इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज वसीम, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, गांव हिंगड़ी आलोट एमपी से जगदीश धाकड़, रंजूबाई, युवराज और शिवांगी धाकड़। अगला सही जवाब है मालवा रेडियो श्रोता संघ से रेनू और कपिला का, कुरुक्षेत्र से कविता चावला का भी सही जवाब है। तो श्रोताओं, आपने हमारा कार्यक्रम सुना, हमें सही जवाब लिखकर भेजें, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें सही जवाब लिखकर भेजते रहिए, कीजिए हमसे वादा।

श्रोताओं, आज से 9 तपा शुरू हो गया है, जिसमें तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया जाता है और भीषण हीट वेव चलने की यानी कि लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलना लू लगने को दावत देने के समान होगा। उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कई शहरों का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। तो इससे बचने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर ना निकलें। हर थोड़ी देर में पानी, नींबू पानी, छाछ या ORS पीते रहें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। घर से बाहर जाते समय सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढकें और धूप का चश्मा जरूर पहनें।

अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो भाई आप सब ने अपना ध्यान रखना है और सुनते रहना है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि।

0: आपके लिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र लेकर आया है कार्यक्रम स्वरांजलि, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ,
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: मंगल भवन
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: कार्यक्रम स्वरांजलि में सुनिए साबरी बंधुओं को।

इसके साथ ही स्वरांजलि कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध भारती से रिले करेंगे।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनकी पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों नमस्ते कुरुक्षेत्र हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। इसके तहत आप हमें फोन कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई गीत। तो फोन लाइंस खुल चुकी हैं, जल्दी से हमें फोन मिलाइए। जब तक आप हमें फोन मिलाते हैं तब तक सुनिए हमारी पसंद का ये गीत।

हमारे साथ जुड़े थे सुनील कुशवाहा जामनगर गुजरात से। शायद किसी कारणवश उनका फोन डिसकनेक्ट हो गया है। सभी श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि अगर आप फोन मिलाते हैं, क्योंकि बड़ी मशक्कत के बाद फोन मिलता है, तो कोशिश कीजिए कि वो किसी कारण से डिसकनेक्ट ना हो। तो इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की थी वो गीत हम आप तक पहुँचाते हैं।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: आवाज कम आ रही है आपकी?
1: हेलो, हाँ जी, आ रही है हमें आपकी आवाज? आ रही है?
2: नहीं आ रही, आ रही।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए।
2: मैं दिनेश राठौर बोल रहा हूँ, हरदोई से, प्रदेश से।
1: जी, यूपी से बोल रहे हैं आप?
2: जी बढ़िया, हम अपने सुनाओ हाल चाल।
1: हम भी ठीक हैं। गीत कौन सा सुनोगे?
2: गीत सुनवा दीजिए, राम लखन फिल्म का।
1: राम लखन का कौन सा गीत?
2: गाने के बोले मुझे तुमसे कितने मिले।
1: जी जी, घर में कौन कौन है दिनेश?

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सची बेटा प्यार सत्कार भाई सत श्री अकाल भाई।
0: सत श्री अकाल। कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं तो भाई पिंड माउड़ खुर्द जिला बठिंडा तो पंजाब तो जगजीत मट्टू बोलदा भाई।
0: कैसे हैं जगजीत जी?
1: ठीक है भाई, तुसी दसो भाई घर परिवार थोड़ी सेहत ठीक है भाई?
0: जी, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र भी स्वस्थ है और मस्त है। आप लोगों के फोन आने से और भी अच्छे हो जाते हैं हम।
1: क्या बात है भाई, थोड़ी ना गलबात करके भी थोड़े कुछ से तो भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा भाई।
0: अच्छा जी, तो आप
1: साढ़े साढ़े बेटा साढ़े
0: हाँ जी
1: सोचता जो थोड़े प्रोग्राम हो गया ना बड़ा प्रोग्राम सम्मेलन हुआ था हमारे यार दोस्त पंजाब में इतने आए थे थोड़े कुछ क्षेत्र आए थे बेटा।
0: अच्छा, आप नहीं आए?
1: मैं बेटा मैं नहीं आया, किसी कारण मैं आ नहीं गया बेटा।
0: अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार से ही
1: आओगे बेटा। मैं तुझे बताता हूँ बेटा, मैं बाइट रेस्ट हूँ बेटा मेरी।
0: अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, गीत कौन सा सुनवाए आपको?
1: गीत बेटा बदाम तो फिल्म है ते फिल्म लिखी है जी रामानंद साध जी ने, ते संगीत अपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का
0: जी,
1: ते गीत गाया जी ये भैन लता जी ने ते रफी साहब जी ने गाया जी।
0: जी जी
1: मेरे अपना है जी सलाम मेरी मैं सलाम सलाम सलाम
0: जी जी जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अपने दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ बेटा, मैं एक पहले एक बात करनी है बेटा मिक्की जी।
0: हाँ जी बोलिए।
1: जो अपने आनंद वासी साहब है ना, अपने सॉरी बेटा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है ना जी अपने।
0: हाँ जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: हाँ जी, उन्होंने जन्म जी 1937 के बीच होया जी। उन्होंने 750 फिल्म के बीच संगीत दिता जी।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: अज उन्होंने पुण्य पुण्य मैं तो भाई कहना नहीं, अज उन्होंने पुण्यतिथि है भाई उन्होंने
0: लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि।
1: हाँ जी, तो उन्होंने अपने चैनल के मैं नमन करता भाई।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: इन्होंने भाई दिवाली वाले दिन जन्म होया जी, इस करके ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रखा जी उन्होंने।
0: हाँ ठीक है, चलिए प्यारेलाल जी अलग है और लक्ष्मीकांत।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ बेटा, वो अलग अलग है जी।
0: हाँ जी, तो
1: जो दोस्तों का में गीत है जी वो भी अलग अलग है ना, यार दोस्तों बाहर भी नहीं जाने वाला जी, उसे रोका था जी आप कट्ठा ही। हाँ। इस करके उत्तर फिल्म का गीत सुन लिया था जी बेटा
0: जी। जी अपने दोस्तों के नाम लीजिए।
1: हाँ जी बेटा जी, मेरे मान जोग बड़े भाई है जी सरदार भगत सिंह ढिल्लों साहब जी, मान जोग बड़े भाई है जी मलकीत सिंह घड़ीसाज
0: जी,
1: जत्थेदार बापू प्यारा सिंह सुखपाल सिंह नेशनल कलोनी तो जी बठिंडा तो जी।
0: जी जी
1: दूजा खाना तो रिटायर हुए डॉक्टर साहब रिटायर हुए जी।
0: जी
1: बेटा तुम सत श्री अकाल बुलाऊंगा बेटा।
0: जी जी, उनको भी हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और
1: बेटा अपनी अनुराधा बेटा भी मेरी सत श्री अकाल बुलाऊंगा बेटा।
0: जी जी, सभी को हम आपकी तरफ से नमस्कार और सत श्री अकाल बोल देंगे।
1: ठीक है भाई, बाबा नानक जी की कृपा करके सत श्री अकाल भाई बेटा।
0: सत श्री अकाल,
1: सत श्री अकाल भाई।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: हमारी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, अब एक काम की बात कर लेते हैं। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार हो जाना एक आम सी ही बात है, लेकिन एक चीज़ जो आज हमारे घरों में उससे भी ज़्यादा आम है वो है घर के दराज में से कोई भी एंटीबायोटिक निकालो और खा लो, या फिर केमिस्ट की दुकान पर जाकर कहना भैया एक एंटीबायोटिक का पत्ता दे देना, ज़रा सा बदन टूट रहा है। अरे सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स खाना अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आजकल कई लोग वायरल इन्फेक्शन यानी साधारण से सर्दी जुकाम में भी एंटीबायोटिक खाने लगते हैं, जबकि सच ये है एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों पर काम करती है, वायरस पर नहीं। जब आप बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो शरीर के अच्छे और जो मददगार बैक्टीरिया हैं वो मरने लगते हैं। और इससे भी बड़ा खतरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप बार बार या बिना वजह के या अधूरी खुराक में एंटीबायोटिक्स लेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर के बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर लेंगे, फिर ये दवाएं भी आप पर बेअसर हो जाएंगी। भाई भविष्य में जब भी, भगवान ना करे आप बीमार हों, लेकिन अगर कभी गंभीर बीमार होंगे तो कोई भी एंटीबायोटिक दवा उस केस में आपके शरीर पर काम ही नहीं करेगी। तो देखिए कितनी गंभीर बात है छोटी सी लेकिन कितनी गंभीर हो सकती है ये। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अपना डॉक्टर नहीं बनना है। हर पीली नीली हरी गोली बीमारी का इलाज नहीं होती। जब भी तबीयत खराब हो डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लें। अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का 3 या 5 दिन का कोर्स लिखा है तो ठीक महसूस होने पर भी उसे बीच में मत छोड़िए, कोर्स पूरा कीजिए। दवाइयां सेहत सुधारने के लिए होते हैं, बीमारी बढ़ाने के लिए नहीं। समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए। और अब देखते हैं हमारे साथ कौन से श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: जी नमस्कार मैम।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैम, मैं ग्राम पोस्ट बटखेड़ा डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम।
1: कैसे हैं विमल जी?
2: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे मैम?
1: और आपने बहुत समय के बाद फोन किया।
2: बिल्कुल मैम, आपके कार्यक्रम में मेरा लगभग करीब 1.5 या 2 साल के बाद आज फिर से कॉल लग रहा है और मुझे बेहद अच्छा लग रहा है आपके इस प्रोग्राम में मेरा कॉल शामिल हुआ, आपसे हमारी बात करने का ये मौका मिल सका।
1: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है विमल जी कि आप इतने समय के बाद हम अपने एक श्रोता से बात कर रहे हैं। कहाँ गायब थे आप?
2: गायब मैम कहीं नहीं थे, प्रोग्राम सुन लेते थे पर थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था, इस चक्कर में आपको कॉल नहीं कर पाया।
1: व्यस्त थे? हाँ
2: हाँ जी, बिजी थोड़े चल रहे थे तो इस चक्कर में नहीं कर पा रहे थे, पर आपका कार्यक्रम दिन हो या रात हो जब भी हमें समय मिलता था हर संडे को सुनते थे रात में और सुबह 10 बजे वाला भी ये प्रोग्राम सुनते हैं।
1: क्या बात है, तो गीत कौन सा सुनवाएं आज आपको?
2: गीत से पहले मैम दो लाइनें पेश करना चाहता हूँ आपके लिए अगर आपकी इजाजत हो तो।
1: जी इरशाद।
2: एक हसरत थी सच्चा प्यार पाने की, मगर चल पड़ी आनिया जमाने की, मेरा गम कोई नहीं समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की।
1: क्या बात है, कितना अच्छा और एक दिल को छू लेने वाली जो ये दो पंक्तियां आपने कही हैं। मुस्कुराना हर हाल में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप दर्द में भी हैं तो मुस्कुराइए तो दर्द भी भाग जाएगा। बहुत अच्छी पंक्तियां आपने कही।
2: और हर इंसान के लिए अगर सुख और दुख ये दो पहलू तो हैं जिंदगी में लगे, अगर इस दुख के लिए हम सुख के साथ काट लेंगे तो हमें दुख का एहसास नहीं होगा मैम।
1: जी जी जी, गीत कौन सा सुनेंगे?
2: मूवी का नाम रहेगा चमत्कार, इसमें बेहतरीन सा नगमा है, प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? नाम बताओ।
1: जी, मैं ग्राम बसुरा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
0: हमें भी अच्छा लगता है। गीत कौन सा सुनेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है हीरो और गाने के बोले तू मेरा हीरो है।
0: आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: दोस्तों कहते हैं भारत की आत्मा गांवों में बसती है और इस आत्मा को ज़िंदा रखने का काम हमारे किसान भाई बहन करते हैं। हम अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों, फैक्ट्रियों और उद्योगों की बातें करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ यानी बैकबोन हमारे किसान हैं। अगर खेत में हल ना चले तो शहरों के बड़े बड़े मॉल और बाजार भी सूने हो जाएंगे। खेती सिर्फ पेट नहीं भरती बल्कि हमारे देश के करोड़ों लोगों को रोजगार भी देती है। कपड़े बनाने वाली सूती मिलें हों या चीनी के कारखाने या पैकेट बंद खाने का बड़ा कारोबार, इन सभी का पहिया तभी घूमता है जब गाँव के किसी खेत में फसल लहलहाती है। जब किसान समृद्ध होता है तो बाजारों में रौनक आती है और देश की तरक्की की जो रफ्तार है वो भी दुगनी हो जाती है। जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि इस देश की हकीकत है। सीमा पर खड़ा जवान अगर देश की सरहद सुरक्षित रखता है तो खेत में डटा किसान देश को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भरता की ताकत देता है। मुसीबत हो, मंदी हो या कोई भी मुश्किल दौर आए, हमारी अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने हमेशा संभाला है तो वो हमारी खेती ने ही संभाला है। तो आज हम सब मिलकर अपने उन भाइयों और बहनों को सलाम करते हैं जो माटी से सोना उगाते हैं। खेतों से शुरू होने वाला ये जो सफर है हमारे देश को विश्व पटल पर मजबूत बनाता है। तो भाई हम यही कहेंगे, खेतों में महकती फसल है जहाँ, खेतों में महकती फसल है जहाँ, देश की खुशहाली का रास्ता है वहाँ। अब देखते हैं हमारे साथ कौन से श्रोता जुड़े हैं। हेलो,
1: हाँ, गुजरात राज्य गिर सोमनाथ।
0: पहले अपना नाम बताइए, नाम तो बताइए।
1: गोपाल जी।
0: गोपाल जी, गोपाल जी कहाँ से बोल रहे हैं गोपाल भाई?
1: हाँ, गुजरात राज्य गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट तरला गांव बोरवा से।
0: अच्छा, तो सोमनाथ का आपने जिक्र किया, सोमनाथ मंदिर के आसपास है कहीं क्या ये?
1: हाँ, हमारा गांव सोमनाथ से 30 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा, तो आप तो गाय वगैरह जाते होंगे सोमनाथ मंदिर?
1: हाँ,
0: बड़ी महत्ता है उस मंदिर की भाई।
1: हाँ,
0: है ना, बहुत बड़ा महत्व है उसका, बहुत लोग वहाँ जाते हैं, दूर दूर से लोग जाते हैं और आप तो उसके बगल में ही हैं, पास ही बैठे हैं।
1: हाँ, और जय सोमनाथ गिर सोमनाथ हर हर महादेव बोला जाता है और श्रावण मास के पवित्र दिन पर श्रद्धालु भक्ति भाव पूर्वक से दर्शन करने के लिए जाते हैं और देश विदेश और अहमदाबाद राजकोट और कोस्ट अलग अलग राज्यों से दर्शनार्थी लाभ लेने के लिए आते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हमें कि दूर दूर से लोग आते हैं और सावन के महीने में तो शिव भगवान का खास एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत लोग उनको मानते हैं कि शिव भगवान सावन में स्वयं विराजमान होते हैं, तो सावन में दर्शन का अलग ही महत्व हो जाता है सावन के महीने में। तो गोपाल भाई जी, घर में कौन कौन है?
1: घर में तो मैं हूँ, मेरा दो बेटे हैं और मेरे माता पिता है और मेरे तीन भाई।
0: जी, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: गाना तो जो आपने अभी तो बात की थी ना कि किसान सभी लोग अपने सोना उगाते हैं और हमको जय जवान जय किसान बोला जाता है, तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे हीरे मोती,
0: उपकार फिल्म का ये गीत है।
1: तो और मेरे साथ सुनने वाले अफजल जी भावनगर से, आतिक भाई मुखी मंडल से और रसिक भाई मिस्त्री, मीनेश भाई पटेल, हितेन और मीत
0: जी, और भी किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: नाम लेना तो चाहे तो गिर सोमनाथ से मेरा मन भाई दाता और अश्विन बापू और लेमेरा भाई, लीलाधर जी, भावेश, रमेश, हर्ष
0: जी, तो आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दीदी। हाँ, जी, जी, जी, जी, जी।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं रंग तरंग कार्यक्रम का यह पहला गीत, जो कि है एक भक्ति गीत। इसे लिया गया है हे गोविंद हे गोपाल एल्बम से। चित्रा सिंह की आवाज है, रायदास ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है।

ऐसी ही गजल बनती है। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं खूबसूरत एल्बम की है गजल, तलत अजीज की आवाज में आनंद बख्शी के पुल और समीर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में हम तो हैं परदेश में, यह गजल राही मासूम रजा ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल्स। इस एल्बम से अनूप जलोटा की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को, जिसे लिखा है मुनीर ने। आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में, घोलती है आपके जीवन में श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग, द खजाना कॉन्सर्ट, बेनाज मशानी की आवाज में मधुरानी के संगीत के साथ।

याद में तेरी इस खूबसूरत सी नज्म के बाद आइए सुनते हैं अगली नज्म, गजल उसने छेड़ी, इस एल्बम से चंदन दास की आवाज में, निदा फाजली के बोल और चंदन दास के संगीत के साथ।

सी जगाए पड़ासन झूम लहरा सतरंग सावन जागे पड़ासी

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से चित्रा सिंह की आवाज में, इफ्तिकार माम सिद्दीकी ने इसे लिखा और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा पंकज उदास की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला नगमा, जो कि होगा तलत अजीज की आवाज में।

हम सुन रहे थे नज्म आगाज द बिगनिंग सोनाली जलोटा। इस एल्बम से सोनाली जलोटा की आवाज में फैयाज जयपुरी के बोल और रूप कुमार राठौर के संगीत के साथ कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटे की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए शुरुआत करते हैं यादों की महफिल का। ये प्यारा सा गीत मुकेश ने गाया है, राम अवतार त्यागी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म है जिंदगी और तूफान।

0: हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोलो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अरे सुनो आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की यादों की महफिल हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अगला गीत आए दिन बहार के फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी तरसती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनूरी।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपनापन फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल। और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे हुए गीतों को।

कार्यक्रम यादों की महफिल का सुनते हैं अंतिम नगमा, जो कि अमृत फिल्म से मनहर उदास अनुराधा वॉडवाल की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर जो शुरुआत करता है एक इबारत के साथ, और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको, और उस इबारत में होती है कुछ बातें, कुछ जज्बात, और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेईमान है पड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें। उसने तो कागज कलम उठाई और पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जो शब्दों का जादुई जाल बुन सकूं, पर सच तो यह है कि मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। तभी खिड़की से के बाहर से एक हवा का झोंका आया, मानो उसके आने की आहट लाया हो। सचमुच आने से उसके आए बाहर और देखते देखते फिजा बदल गई। उसकी एक झलक पाते ही शर्म के मारे बादलों की ओट में छुप गए सारे नजारे। उसने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा और हौसले से कहा, तुम पूछती हो ना कि मेरे दिल में आज क्या है, तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम दुनिया में नहीं बल्कि झिलमिल सितारों का आंगन जैसी किसी मखमली जन्नत में रह रहे हैं। ये प्यारी सी इबारत हमने भेजी थी आपको, और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात लिख डाले हैं हमारे साथ में, और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा के झोंकों से अपनी इजराहे मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर छा जाए और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना एक नई दुनिया में ही ले जाता है जो जन्नत से कम नहीं होती। और इस बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और उस पर आज से नौ तपा शुरू हो गए हैं। देखिए गर्मी कहर ढाएगी, फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो, आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफर, हो जाओ ठंडे गीतों की बूंदों से सराबोर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सफर भी तो साथ में यूं ही घट जाता है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, आपकी वजह से हम गर्मी का एहसास भूल जाते हैं और विविध भारती के सुरीले सफर में रम जाते हैं, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सफर कट जाता है, एक घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता, बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, ये उपाय तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है, अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है। तेल और सोने जैसी विदेशी वस्तुओं की खपत कम होने से देश की आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम की है, वो और भी कई लोगों ने अपने अपने स्तर पर ईंधन बचत के लिए प्रयास शुरू किए हैं। श्री मनोहर लाल आज जींद जिले के गांव बीबीपुर स्थित सेल्फी विद डॉटर अभियान के जनक एवं पूर्व सरपंच सुनील जागलान के आवास पर उनके परिवार से शिष्टाचार भेंट के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बिजली की बढ़ती मांग पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बार देश में 21 मई को 271 गीगावाट बिजली की मांग दर्ज की गई, जिसे लगभग पूरा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने सुनील जागलान के सामाजिक अभियानों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुनील जागलान से उनका वर्षों पुराना संबंध।
2: सुनील जागलान जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है, जब से इन्होंने इस अभियान को चलाया था सेल्फी विद डॉटर, उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी के प्रेरणा से देश भर में पहले हरियाणा में शुरू हुआ फिर देश भर में चला, और उसी दौरान उस मुहिम को तेज करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर्स, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया।
1: श्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज के बुराइयों को खत्म करने के लिए नए और सकारात्मक प्रयास बेहद जरूरी हैं। उन्होंने सुनील जांगलान द्वारा चलाए जा रहे गाली बंद घर अभियान की भी सराहना करते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान तभी संभव है जब उसका सही विश्लेषण और जागरूकता हो। उल्लेखनीय है कि सुनील जांगलान ने अपने सरपंच कार्यकाल में बीबीपुर गांव को देश की पहली हाईटेक पंचायतों में शामिल कराया था। उनके कार्यकाल में महिलाओं की पहली महापंचायत का आयोजन भी बीबीपुर में हुआ था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पंचकुला सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पुलिस भर्ती शुरू हो गई है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेडियम में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और उम्मीदवारों से संवाद किया।
3: नाम दीपक है मेरा, कैथल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ मैं और यहाँ पे पीएमटी चल रही है हरियाणा पुलिस की। अभी सीएम साहब आए थे यहाँ पे, देख के गए हैं कि भाई व्यवस्था वगैरह कैसी है और कुछ बच्चों से बातें भी की। उन्होंने पूछा था भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, नहीं सेल्फी वगैरह ली है बच्चों के साथ, हाथ भी मिलाया है, अच्छा है। अगर आगे पूछ रहे हैं तो
1: मुख्यमंत्री ने प्रशासन द्वारा बनाए गए आराम क्षेत्र में भर्ती के लिए चल रही शारीरिक जांच के लिए पहुंचे उम्मीदवारों के अभिभावकों से भी बातचीत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी, कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामले में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने अम्बाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास, विकास और वैचारिक मूल्यों से अवगत कराया। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं और वक्ताओं ने राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां, चुनाव प्रबंधन, वैचारिक अधिष्ठान, केन्द्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं, सोशल मीडिया और आईटी मीडिया की भूमिका जैसे विषयों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि भाजपा परिवारवाद नहीं बल्कि विचारवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भिवानी जिले के कालूवास गांव के रहने वाले 19 वर्षीय पहलवान साहिल पंघाल ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में हिंद केसरी का खिताब अपने नाम कर क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन किया है। इस ऐतिहासिक और गौरवमय उपलब्धि के बाद कल भिवानी के बड़ चौक स्थित किसान युवा क्लब के मुख्यालय पहुंचने पर साहिल पंघाल का जोरदार स्वागत किया गया। भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 30 मई को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए 10 पीठ गठित की गई है जो मामलों की सुनवाई करेगी। ये लोक अदालत परिक्रमा लिखित अधिनियम की धारा 138 यानी चेक बाउंस से जुड़े मामलों के समाधान के लिए लगाई जाएगी। भिवानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष DR चालिया ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के निर्देशों पर विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार।

0: हम सुन रहे थे शोर फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार है संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है और कई लोगों की भारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी जो बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके पसंदीदा गीतों में से यह गीत है और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं और इन गीतों में से उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं और व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं और जिंदगी की फिलासफी की व्याख्या करता है ये गीत, लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है। ये गीत बहुत खूबसूरत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया है इस गीत को। और हमने आपसे पूछा कि आपके पसंदीदा गीत कौन है, तो अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट आप डालते जाइए, शायद कभी कहीं किसी रोज़ हम आपके गीत भजवा सकें। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इन फिल्मों के हिसाब से। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज महान संगीतकार जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है, आज भी इस महान संगीतकार का संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता इस इबारत को पढ़कर बहुत खुश हो गए और उन्होंने लिखा कि वह सुनने वाले नहीं थे लेकिन उन्हें इबारत पढ़कर लगा कि क्यों नहीं सुन लिया जाए, प्रोग्राम सुनो तो परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, संगीत और रेडियो जो है वो आपके जीवन की कई सारी चिंताओं को दूर कर सकता है, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी कविता बनाई है कि आसमां में छा गए बादल तो मौसम का मिजाज बदल दो, कागज कलम उठाओ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, शायर नहीं तुम जादूगर हो, शब्दों का जादुई संसार बुन दो, जिंदगी का गीत गुनगुना लो, प्यार का नगमा लिख दो, हवा के झोंके के साथ बाहर आई है, आंखों से दिल की बात कह दो। और जब इतनी अच्छी बात कही है तो अगला गीत सुनवाना बनता है और अगले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। बस इतना बताइएगा ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है। और बहुत खूबसूरत सा गीत है और बस बताते रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म, जो संगीत की यात्रा शुरू की उसकी पहली फिल्म कौन सी है, बताइएगा जल्दी से। पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार।
1: मेरे दिल में आज

हम सुन रहे थे ये गीत दाग फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने है, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म दाग का ये गीत है जो सही लिखा है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। गायक हैं आभास कुमार गांगुली, आभास कुमार गांगुली मतलब किशोर कुमार। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं से हमने एक प्रश्न और पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि एलपी की पहली फिल्म पारसमणि 1963 की, इसी से उन्होंने डेब्यू किया था। जी बाबू भाई मिस्त्री की ये फिल्म जिसने उनके जीवन के इस संगीतमय जीवन के इस करियर की शुरुआत की थी। और उसके साथ ही जो हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं, तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा चुनने का सुख देता है। बदलते मौसम के साथ मन की गांठें बदलती हैं, खुलती रहती हैं। बर्फीली झील पर कोई बादल सरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है खत लिखूं, मगर कागज़ कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना ही है कि यह प्यार का नगमा है। जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान, शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना, और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं, और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि एक और गाना, यानी ये गीत नहीं है वह, लेकिन एक गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है, उसमें उन्होंने अपने उन गुरु का नाम भी लिया है, तो ज़रा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, ज़रूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत है आप सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज़ कौन सी है। अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिए भी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया, और उन गुरु का नाम क्या है।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमने कहा था कि अगर आप गायक की आवाज़ को पहचान लें तो हमें ज़रूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज़ को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार हैं वो शैलेंद्र सिंह हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है। तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज़ एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को गर्मी किसी भी मौसम में चैन नहीं है। गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है और ठंड हो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो देखिए असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो हैं वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं, प्यारेलाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारेलाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है, और यही बात यहाँ पर आई है और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन उस शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है। विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का मिजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं। खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज कलम को छूता है और दिल अपने आप प्यार का नगमा लिखने लगता है। फिजा की मैं ऐसी मिठास घुल जाती है कि चुप गए सारे नज़ारे भी सितारों के आंगन में अपनी चमक बिखेरने लगते हैं। उस पल में प्रकृति प्रेम और एहसास मिलकर जीवन को एक सुंदर कविता बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें आप लिखते हैं। और इन्हीं अच्छी बातों के बीच में मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। अगला गीत बड़ा प्यारा सा है। आप उस क्रम को मत तोड़िए जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन है, कौन सा है, आप ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि ये गीत जो हैं वो दिल को छूते हैं। अब मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। इस गीत के साथ में भी दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ये जो गीत है, इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है। जो गीत आप सुनने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता दीजिएगा। और अब दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्मफेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, बेस्ट संगीतकार के रूप में कितने मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये सुंदर सा नगमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है। और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़ें इस धारा के साथ।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम।

0: या अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ। और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का तराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति सुरीले गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, आप जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूं, तो जरूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं तो बता दीजिए कि इस ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे जीने की राह फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं। तो हमारे श्रोताओं ने अंदाज़ा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज़्यादा गाए हैं और कोई कह रहा है मोहम्मद रफ़ी ने ज़्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, ज़रूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज़्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है, जीवन में ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, जरूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत। अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, जरूर से बताइएगा।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मार कटाना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार कटाना जमाना।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में. आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया. हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था. फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था. बिल्कुल सही बात है. और हमारा एक श्रोता लिख रहा है, एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों बच्चे भी हो गए, 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई, वासी भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं. ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं. और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में. तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई. यह फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारे लाल ने संगीत संयोजन पूरा किया. बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके. आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पड़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं. तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ. आप सबने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं. ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से. मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है.

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम हैं। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सब का ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

0: largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said Washington and Tehran have made significant progress in talks to reopen the Strait of Hormuz. Talking to reporters, Rubio said a preliminary agreement could pave the way for broader negotiations on Iran's nuclear program and regional security. However, he stressed that President Donald Trump would not accept what he called a bad deal and would give diplomacy every chance before considering other options. The U.S. Secretary of State said there has been global support for the ongoing efforts to end the conflict in West Asia, but added that the road to peace is not very easy. Mr. Rubio also said the United States is continuing efforts to maintain stability in Lebanon, blaming Hezbollah for ongoing tensions in the region. Rubio is currently in India for meetings with Indian leaders and will attend the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. The India Meteorological Department, IMD, has issued a yellow alert for Delhi, forecasting heatwave conditions over the next 3 days. According to the Met Department, the daytime temperatures in the national capital are expected to remain between 44 and 46 degrees Celsius. Heatwave conditions are also expected to persist over Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, coastal Andhra Pradesh, East Rajasthan, Jharkhand, Odisha, Telangana and West Uttar Pradesh during the next 2 days. IMD said hot and humid weather conditions will persist over Gangetic West Bengal today. East Uttar Pradesh and Vidarbha are likely to experience a warm night tonight. Madhya Pradesh has entered the North Upper period starting today and it is going to last till the 2nd of next month. North Upa is basically those 9 days in the year when the sun is at its harshest and the heat is at its absolute peak. More from our correspondent.
1: Madhya Pradesh has entered the North Upa period starting today and it's going to last till June 2nd. North Upa is basically those 9 days in the year when the sun is at its harshest and the heat is at its absolute peak. The weather department has issued a heatwave warning for 44 districts across the state today. Things are most serious in Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna and Satna. These 5 districts have been put on red alert. Yesterday, Khajuraho and Nogaon turned out to be the hottest spot in the state with temperatures hitting 45.8 degrees Celsius. In the state capital Bhopal, it was 42.7 degrees, Gwalior recorded 44.1 degree and Jabalpur saw 43.3 degrees. The weather department says the heat is only going to get worse between May 25th and 28th and there is no sign of any relief till 31st May. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
0: Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual 5-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.2% higher during afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the U.S.-Iran conflict. The Sensex surged 944 points to 76,360, while the Nifty climbed 270 points to 23,989 when reports last came in. The Norway Chess 2026 kicks off in Oslo today with round 1 matches. The tournament will officially begin at 8:30 p.m. IST. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heatwave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा, कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
3: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
4: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में सम्मान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
2: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का ये गीत, भीमसेन जोशी मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है जलदीप फिल्म से। सुधा मल्होत्रा, स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है, आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

हम सुन रहे थे आलम आरा फिल्म का यह गीत आशा भोसले की आवाज में। शेवन रिजवी ने इसे लिखा और एआर कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
4: दत्त मुरलिक धुन सुन आई राधे जमुनक तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्नाद राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

लहरलोडनिया लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नागिन दे दे सगन नदादा किट झट झट झट झलन झट झट सगन का सगन का किट झट झट झट सगन का जी सगन नदा ताधा किट झट सगन का ताधा सगन का।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देवर्मन का है संगीत।

0: सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है। और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है।
1: जी।
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल। वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: जी बिल्कुल, आज हम बिहार की व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी, तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हमने नहीं खाया है। तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं, जो एक
1: बिल्कुल
2: गीत भी होते हैं, लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित, कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में

0: सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। आए, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी,
2: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना? हम तो रसोई ना बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ।

0: कहती तो ठीक हो तुम सब, अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू बहू ये क्या कर डाला है?
1: अब इब का हो अम्मा जी, हाँ कहो तो पंडित जी को बुला ले हम।
0: हाँ ठीक कहती हो, अरे हाँ जाओ जल्दी से जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
2: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
3: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
2: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
0: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है बताइए जरा।
3: हाँ हाँ पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। हाँ अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
4: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
3: 7 बजे सुबह।
2: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
3: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है, ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
0: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
3: रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
0: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
3: हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए बस। हरे कृष्ण।
5: हाँ हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
0: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए?
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
3: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हां, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
0: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना? पंडित जी ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
3: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
2: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
3: हरे कृष्ण उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
0: और पंडित जी पूजा का सामान कितना लगेगा?
3: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और 1 मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
0: अरे बाप इतना सामान। अरे पंडित जी इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ?
3: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
5: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
2: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
3: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण
0: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
3: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
0: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है?
3: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
0: अच्छा।
3: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
0: ऐसा?
3: हरे कृष्ण।
4: हाँ ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी के तोन तो देखो।
3: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो, और देखो पूजा के लिए।
2: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
1: अरे अम्मा जी।
0: हाँ?
1: ये तो
0: क्या हुआ, बोलो तो।
4: अरे हुआ का,
1: अरे क्या बताए अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
3: क्या? बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गए
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में।
1: हाँ।
0: और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो रूठा ना करो। अब तक मान गए होंगे
1: जी। हाँ।
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते हैं। पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं
0: जी।
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: और
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
1: बिल्कुल
0: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
0: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है,
1: वो
0: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है, क्योंकि वो और दिमाग भी से सक्रिय होता है, क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मज़ेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
1: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जब सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
0: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया
0: ये कविता। जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ।
1: जिस पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
0: हाँ,
1: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
0: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार से इस खेल में उनको डाल दिया तो।
0: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहाँ से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है। शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है,
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं। एक जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखे कि वो गोल कर देगा,
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
1: जी।

0: हाँ, तो विधि एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, एक कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती है। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत, बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं। और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
1: जी हाँ, और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल, और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना, मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ, सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
0: लेके चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
1: क्या
0: वो होता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम
0: अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतया जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है। और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। हाँ। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है, ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई है, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो।
0: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये सही कहा,
0: जाने कब कहां कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
1: जरूर
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है, पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कंफर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार

0: कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी टकोर, मतलब इन्होंने जहाँ जहाँ लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियत रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे, और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है, तो विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें।
1: बिल्कुल,
0: रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए, और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है, और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है, क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वहीं मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं, तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोए तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए, और इसे मध्यम आंच पर पकाइए जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची, जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए, और इलायची का पाउडर डालिए, और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
1: बहुत अच्छा लगेगा,
0: इतना आइसक्रीम जैसा गले में सूदिंग सूदिंग,
1: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देख कर बनाए जाते हैं राजस्थान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं गीत
0: जी।

0: तो आरती
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है, कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है। विक्ट्री विधि। सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी, धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो। तो ये थायराइड है क्या, इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी आपके शरीर को, उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है, दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने इससे अगर शुरुआत की।
0: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है।
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट्स,
1: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं, और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते हैं।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है, कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गोइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड, पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम T3 T4 TSH का
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती, इसमें क्या हो जाता है TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
0: अच्छा,
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग, प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
0: अच्छा,
1: और ये अनिवार्य है।
0: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
1: पॉजिटिव
0: जैसे कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
1: हाँ, रेंज के बाहर,
0: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
1: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
0: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए अगर है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
1: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
0: जी,
1: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: जी, जी जी,
1: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि हाँ, ये लेवल क्या है,
1: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
0: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
1: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
0: काला बाजार,
1: काला बाजार,
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी जी,
1: विटिलिगो मतलब सफ़ेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब लूज मोशंस।
0: जी।
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी।
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या है,
0: किधर है।
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी, जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
0: जी,
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया है, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले, या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
0: जी।
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षण दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका
0: आसान
1: जो
0: हो जाती है।
1: हाँ, क्योर है, वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
0: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
1: हाँ।
0: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
1: जरूरत
0: है। प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा, फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को, मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल
0: जी।
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, पड़े है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना
0: जी जी।
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ही है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है
0: जी जी।
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
0: जी।
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
0: फोबिया,
1: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की, एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
0: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
1: तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
0: सब ठीक है।
1: तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
0: जी।
1: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
0: फिजिकल,
1: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो वाला ना,
0: सारी विषैली चीजें,
1: हाँ,
0: तत्व जो है अंदर रहते हैं,
1: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर, बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
0: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
1: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो, भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
0: जी जी।
1: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं।
0: जी।
1: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
0: इतिहास क्या है परिवार का।
1: परिवार का अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
0: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
1: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
0: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
1: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
0: बैजू बावरा। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात,
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना
1: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देख के
1: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
1: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है,
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि

0: अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है, तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरॉक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा
1: मायूस
0: सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरॉक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरॉक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल
0: है? क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ
0: रहा है। सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है, डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
1: जी जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत। क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का, मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो तो अमुक करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो फल है खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज्यादा पानी पियोगे, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आप की खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
1: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो।
0: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।
1: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
0: उतना ही।
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें
0: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो बड़ी खतरनाक ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है,
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए,
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए।
0: हाँ, कम कर दीजिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे, ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल
0: करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी,

0: शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा,
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या, मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए,
0: एक अच्छा सा गाना चलते चलते मैं हूँ।

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रो पकड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज़ में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नज़दीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर ये कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह का प्रसारण।
1: अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
2: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
3: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Shrimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतीकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009। And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: guidelines.
2: श्री
1: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
1: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: श्री विश्वबंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
1: श्री भरत सिंह भारती, कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खासतौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987, व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil, Kala Algoza Vadan.
0: Jaisalmer ke Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
2: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: Kaun nahi janta Harmanpreet Kaur ko, jinhone राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
2: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
1: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, साहित्य एवं शिक्षा।
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
2: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
1: Shri Kumar Bose, Kala Tabla.
0: Kumar Bose, Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
2: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
1: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
2: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन्स एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
2: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school. Being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है. राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी, इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और ख़ास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
2: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी.
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा.
0: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है. वन दादी नाम से जानी जाती हैं. 3,000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं.
2: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल, केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
0: People's
1: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले. आप एक
1: डॉक्टर रामचंद्र सामाजिक
0: कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
2: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
1: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा.
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए.
2: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021, विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान. He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security needs.
1: Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं. लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है. राष्ट्रपति जी की ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए.
2: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy
1: Award. Shri Ghafruddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं. इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
2: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस। His work has supported academic research including PhD level studies.
1: Mir Hazi Qasim, Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
2: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
1: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
2: ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट। He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
2: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
2: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर and the academic bank of credits.
1: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
0: Aur ab bari is 23 varshiya khiladi ki T44 unchi kood mein vishw mein aap number 1 hain aur para olympic padak jeetne wale sabse kam umr ke bharatiya para athlete hain Praveen Kumar.
2: Shri Praveen Kumar went on to claim gold at the world para athletics Grand Prix with a leap of 2.05 meters, setting an Asian record. At Tokyo Paralympics, he won a silver medal.
1: Shri K. Vijay Kumar, Civil Seva.
0: Vijay Kumar ji, CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: As Commissioner of Chennai, Shri K. Vijay Kumar reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG Law and Order, he strengthened public safety
1: standards. Deva Lord, Dada Lord, Krishi.
0: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
2: श्री रंग देवा लाड़ इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
0: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
2: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
0: 69 वर्षीय Dr. Mandal, International Cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
2: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
0: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Buddh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
2: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
2: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
2: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
1: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, कंथा एम्ब्रॉयडरी।
0: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज ऑल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
2: Well, Shri Mukhopadhyay's
1: Shri Satyanarayan Nandlal Nuwal, Vyapar Evam Udyog.
0: 74 वर्षीय Nuwal, Solar Group of Industries के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
2: Under Shri Nuwal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition.
1: श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम।
0: सिलंबम 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानिवेल।
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते राष्ट्रपति जी खुद अपने आकर श्री पंड्या का सम्मान।
2: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
2: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swam ek seedhi utar ke niche aati hue aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
2: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार
0: उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
2: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
1: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
2: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr.
2: students.
1: Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
2: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
1: Deepika Reddy, Kala Nritya.
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की 3 पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
2: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts Shri have borne
1: fruit. Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
0: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. Aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
2: श्री हरिचरण सैकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
1: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
2: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
2: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
0: Baldev Singh ji ne बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच हैं और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
1: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
0: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
0: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
1: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
0: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, ख़ास तौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज in association with the National Council for Science and Technology.

0: मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस काला आजार में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड काला आजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। He has published extensively in academic journals including NEJM and
2: Dr. S. G. Sushil Amma, Samaj Seva.
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
0: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as authorer in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
2: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर।
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज़्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविज़न और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hain aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar photovoltaic se kshetron mein bahut karya kiya hai.
1: Professor Vasi, throughout his career in both semiconductors and solar photovoltaics, he stressed the importance of interdisciplinary, collaborative and inclusive research, which he thought was necessary, especially on major national missions. He has published about 200 papers in leading journals.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत योगदान दिया है।

0: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Wakankar Award from the Government of Madhya Pradesh in
1: 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
2: Gambhir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है.
0: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग. A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge, huge success.
1: Shri Halley War, Samaj Seva.
2: अब बारी हैली वार जी की. आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं.
0: Shri War has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
2: और अब सचिव महोदय आते हुए, चूंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति,
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए. धन्यवाद महोदय.

0: we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the ceremony.
1: Akashwani se uska aankhon dekha haal bhi sunna na bhule. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया

अभी आप सुन रहे थे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह का प्रसारण।

अब एक ज़रूरी गुमशुदगी संबंधी सूचना सुनिए। एक लड़की जिसका नाम ज्योति पुत्री प्रकाश गांव मुरथल छानपुरा डेरा जिला कुरुक्षेत्र से घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिसका हुल्ला इस प्रकार है। उम्र 17 साल, रंगोरा, चेहरा गोल, कद 5 फुट और उसने हरा सूट और पैरों में काले रंग की चप्पल पहनी हुई है। जिस किसी को ज्योति नाम की इस गुमशुदा लड़की के विषय में यदि कोई जानकारी मिले तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। झांसा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा 01744-222-100, पुलिस कंट्रोल रूम कुरुक्षेत्र हरियाणा 01744-222-100, अनुसंधान अधिकारी 9466501319 और दूसरा नंबर है 8307920151। सूचना समाप्त हुई।

FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा के पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the first civil investiture ceremony held at the Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with the Padma Vibhushan. In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was awarded Padma Bhushan for his services in the field of public affairs. Besides, Shatavdhani Dr. R. Ganesh received the award in the field of art. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received the Padma Bhushan for his contribution to trade and industry, while Dr. Kalipati Ramasamy Palaniswamy received the award in recognition of his outstanding contribution to the field of medicine. Those eminent personalities who have been honoured with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar for her contribution in the field of sports and Taga Ram Bheel for his contribution in the field of arts. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy, among others, were also present on the occasion. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma Awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. The government is making all efforts to ensure smooth supply of petroleum products within the country. Addressing the inter-ministerial briefing in New Delhi today on the recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the refinery production of LPG in the country has been increased to 50,000 tons per day. The Joint Secretary said that over 8 lakh PNG connections have been gasified since March, adding that infrastructure has been created for 2,87,000 in connections. Additional Secretary of the Department of Fertilizers, Aparna Sharma, said that the overall stock position of fertilizers in the country remains comfortable. The Supreme Court has issued notice to the Union Government on a PIL seeking stricter prohibition of child labour in entertainment and hospitality-linked establishments. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi and Justice Vipul M. Pancholi took note of the submissions made by child rights collective Just Rights for Children Alliance. A Delhi court today convicted Congress leader Alka Lamba in a case related to an assault on police personnel during a protest at the Jantar Mantar in the year 2024. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Pamar convicted Lamba and fixed 5th of June to hear the arguments on Lamba's sentencing. The prosecution had accused Lamba, the president of the All India Mahila Congress, of obstructing police and blocking a public road while holding a protest at the Jantar Mantar on 29th of July 2024. Members of the Delhi Gymkhana Club today moved the Delhi High Court against the centre's order, asking the club to hand over its premises to the government by the 5th of next month. The court listed the lawsuit for hearing tomorrow. The centre has asked the Gymkhana Club in Lachianzis, Delhi, to hand over its premises by 5th of June, citing that the 27.3-acre land parcel was required for strengthening and securing the defence infrastructure. In Tamil Nadu, political developments within the opposition AIADMK took a dramatic turn today, as three MLAs belonging to the dissent group led by senior leader S.P. Velumani tendered their resignations from the assembly and joined the ruling Tamilaga Vetrikaragam or TVK. Benchmark domestic equity indices ended on a bullish note today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. Sensex surged 1,074 points or 1.4% to close at 76,489, while Nifty advanced 312 points to settle at 24,032. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान महिला पत्रकारों के साथ हरियाणा की नीतियों व मीडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है, इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। श्री मनोहर लाल ने भिवानी के गांव पुर में बहुउद्देशीय हॉल व पुस्तकालय का शिलान्यास किया। 104 बेटियों को निशुल्क साइकिल प्रदान किए। देश में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिदिन किया गया। कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी शुरू हुई और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के साथ लू का प्रकोप जारी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में पहले नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। आज 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा भवन में महिला पत्रकारों के कार्यक्रम में शिरकत की और राज्य की नीतियों और मीडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कल्याणकारी कामों के लिए कई तरह की पहल करती है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग ज्यादा समझदार और आधुनिक होते जा रहे हैं। जब भी कहीं कोई घटना या विकास होता है तो वह तुरंत मोबाइल फोन पर दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके मन में कोई गलत इरादा या अपना स्वार्थ होता है, वे अक्सर सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाते हैं। इससे न सिर्फ नुकसान होता है बल्कि लोगों का भरोसा भी कम होता है। इससे कई तरह की समस्याएं और चुनौतियां सामने आती हैं। श्री राहुल गांधी के कथित तौर पर गुमराह करने वाले बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान को खतरा बताकर लोगों को गुमराह करती है, पर देश का नागरिक अब सब समझता है।

0: विपक्ष की भूमिका है दुर्भाग्यपूर्ण है। देश समझ रहा, क्या वो अपना कार्यकाल भूल दे? 1975 में क्या संविधान को खतरा नहीं था? 1980 के अंदर जो कत्लेआम हुआ, क्या उसके अंदर संविधान को खतरा नहीं हुआ? इनके समय में क्या क्या हुआ? कितने बार अमेंडमेंट किया गया, अपने स्वार्थ के लिए किया गया? जब देश के अंदर जो सबसे पहला जीप घोटाला हुआ था, क्या उस वक्त संविधान खतरे में नहीं आया था? जब अगस्ते हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ तो उस समय संविधान खतरे में नहीं था? ये मेरे ख्याल से कोई राहुल को स्क्रिप्ट लिख करके देता है, पता नहीं वो कौन व्यक्ति है।
1: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है। वे आज जींद जिले के गांव बीबीपुर में सेल्फी विद डॉटर अभियान के जनक एवं पूर्व सरपंच सुनील जागलान से परिवार से भेंट के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने हर स्तर पर ईंधन बचाने के प्रयास शुरू किए हैं।
2: ये अभियान देश के हित में है, या आखिर हम तो एक ही गाड़ी पर चलना होता है। ये बात अलग है कि पुलिस का अपना दायित्व होता है, वो हमारे साथ एक गाड़ी आके लगा लेते हैं, वरना तो अगर अकेली गाड़ी में हम चले तो हमें दिक्कत नहीं है। बोल है उस नाते से प्रधानमंत्री जी ने भी गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने कम कर दिया है, सब लोग प्रेरणा ले रहे हैं और कुछ देर बाद वो लोग भी इसको इस अपील का पालन करने लगेंगे तो बहुत बड़ा असर होगा। हमारी देशी मुद्रा वो बचेगी, देश की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होगी। उन्होंने न केवल तेल के लिए कहा है बल्कि उन्होंने कहा कि सोना भी कम मंगाओ, जो चीजें विदेशी मुद्रा को खपत करती है वो कम की जाए।
1: केंद्रीय मंत्री ने सुनील जागलान के सामाजिक अभियानों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुनील जागलान से उनका वर्षों पुराना संबंध है।
3: सुनील जागलान जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है, जब से इन्होंने इस अभियान को चलाया था सेल्फी विद डॉटर, उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में, पहले हरियाणा में शुरू हुआ फिर देश भर में चला, और उसी दौरान उस मुहिम को तेज करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया।
1: श्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए नए और सकारात्मक प्रयास बेहद जरूरी हैं। उन्होंने सुनील जागलान द्वारा चलाए जा रहे गाली बंद घर अभियान की भी सराहना करते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान तभी संभव है जब उसका सही विश्लेषण और जागरूकता हो। उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान ने अपने सरपंच कार्यकाल में बीबीपुर गांव को देश की पहली हाईटेक पंचायतों में शामिल कराया था। उनके कार्यकाल में महिलाओं की पहली महापंचायत का आयोजन भी बीबीपुर में हुआ था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि देश में बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 21 मई को देश में अधिकतम 271 गीगाबाइट बिजली खर्च हुई, जबकि उत्पादन 274 गीगाबाइट था। इसीलिए बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले वर्ष गर्मियों के सीजन में 300 गीगाबाइट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री भिवानी के गांव पुर में सर्व कल्याण मंच के कार्यक्रम में 33 गांवों की 104 बेटियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुर गांव से 90 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले बहुउद्देशीय हॉल व पुस्तकालय का शिलान्यास भी किया। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक वाहनों, रेल, मेट्रो और बसों का प्रयोग करें, गाड़ियों को पूल करके प्रयोग करें ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग बढ़ाने और रसोई में भी गैस के बजाय इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में कमी आएगी तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जिससे देश को ताकत मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया है।
4: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
1: सुश्री शर्मा ने कहा कि इस महीने की शुरुआत

0: से अब तक लगभग 1,56,000 टन व्यावसायिक एलपीजी की बिक्री हुई है। कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी शुरू हो गई है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनु सोनी ने कहा कि नागरिक अस्पताल में रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट सर्जरी की शुरुआत होना कुरुक्षेत्र ही नहीं पूरे हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि है।
1: रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट सर्जरी जिसके लिए जो हमें बड़े शहरों दिल्ली एनसीआर में जाना पड़ता था वो आज सिविल हॉस्पिटल में शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही खुशी का दिन है कुरुक्षेत्र वासियों के लिए और सारे हरियाणा के लिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी की जा रही है, कोई खर्चा नहीं है, पेशेंट का आयुष्मान कार्ड लेके आना है। रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट बहुत ही फायदेमंद सर्जरी रहने वाली है क्योंकि पेशेंट को जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही छोटे चीरे द्वारा सर्जरी की जाती है, इसमें मिनिमल ब्लड लॉस होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट जल्दी चलने लग जाता है।
0: पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के साथ लू का प्रकोप जारी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि 29 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ने और राजस्थान के ऊपर एक चक्रवात बनने से हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने, धूल भरी हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है।
2: अगले 4 दिनों में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने तथा दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने लू चलने की संभावना है, परंतु 29 मई से पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण मौसम में फिर से बदलाव होने 29 मई रात्रि से 1 जून के दौरान हरियाणा में हवाओं का गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है।
0: और इसी के साथ अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान महिला पत्रकारों के साथ हरियाणा की नीतियों और मीडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किए और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
3: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनते हैं गीता संदेश। आज आप श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 1-4 तक की व्याख्या सुनेंगे। व्याख्याकार हैं डॉक्टर रामचंद्र।
4: आज तक आपने गीता के 3 अध्याय तक की व्याख्या को सुना है। आज हम गीता संदेश के 4 अध्याय का आरंभ कर रहे हैं और गीता का यह 4 अध्याय ज्ञान योग के रूप में जाना जाता है। गीता के इस अध्याय का पहला श्लोक जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्लोक यह है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। यहाँ पर इमं विवस्वते योगम, इस विवस्वान के योग को, अहम अव्ययम, मैं अव्यय स्वरूप, विवस्वान मनवे प्राह, ये मनवे संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति है, मनु को कहा और मनु हूँ इक्ष्वाकवे अब्रवीत, यह इसका पदच्छेद है। भगवान कहते हैं कि इस अनश्वर योग को मैंने सबसे पहले विवस्वान को बताया। यह एक ऐसा योग था जो अव्यय अर्थात जिसका व्यय नहीं है, विनाश नहीं है, जो शाश्वत योग है। विवस्वान ने इस योग की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मनु को प्रदान किया और मनु ने इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इक्ष्वाकु को बताया। एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान परंपरा के आदिम स्रोत को हमारे समक्ष रख रहे हैं। महाभारत के शांति पर्व में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है जहाँ पर कहा गया है कि त्रेता युग के आरंभ में विवस्वान ने मनु को योग दिया था और मनु ने लोक व्यवहार की समग्रता एवं संपूर्ति के लिए मनु इक्ष्वाकु को प्रदान कर गए और उसके बाद में यह योग संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। एक प्रकार से यह इस बात को बताया जा रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा कि हमारी परंपरा अनादिकाल से निरंतर आगे बढ़ रही है। मध्यकाल में अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हुए परंतु वही परंपरा मनुष्यों के द्वारा शाश्वत रूप से जीवित रही और वर्तमान में भगवान कृष्ण अर्जुन को फिर से उस ज्ञान को उपदेश दे रहे हैं। इस क्रम में अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस श्लोक को जब हम देखते हैं तो इसमें अर्जुन के लिए परंतप इस संबोधन को किया गया है। परंतप का अर्थ है जो सब प्रकार के शत्रुओं को नष्ट कर देता है। भगवान इस श्लोक में उस ज्ञान की महान राशि का प्रबंधन कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि परंपरा से प्राप्त होती रही थी और वर्तमान समय में भी लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ पर एक विशेष संबोधन दिया गया है, राजर्षयो विदुः, अर्थात जितने भी राजर्षि हैं, केवल ब्रह्मर्षि महर्षि ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा में जो राजा होते थे वे भी मुनियों जैसा जीवन जीते थे। राजाओं के लिए भी जीवन की ऐसी परंपरा का विधान किया गया है जहाँ पर राजा मनीषी लोग नृप लोग भी ऋषियों के नियमों का पालन करते थे। उन्हें साधारण राजा न कह करके राजर्षि शब्द के द्वारा संबोधित किया गया है। भगवान कहते हैं कि परंपरा से प्राप्त इस महान योग की दिव्य परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही, परंतु हे परंतप, हे शत्रुओं को सताने वाले अर्जुन, एक लंबे अंतराल के बाद में योगः नष्टः कालेन इह महता, एक लंबे अंतराल के बाद में योग की वह दिव्य परंपरा नष्ट हो गई। यहाँ पर जो परंतप का शब्द का प्रयोग किया गया है वह वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस रूप में महत्वपूर्ण है कि जब हम व्यक्ति विशेष की ज्ञान गांभीर्य को या उसकी गुणों की क्षमता को देखते हैं तो अर्जुन हमारे समक्ष एक बहुत ही अपूर्व धनुर्धारी के रूप में आता है। यह परंतप जो शब्द है वह स्पष्ट करता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहता है उसे सामाजिक मूल्यों का आपघात करने वाला व्यक्ति कोई हो तो उसे नष्ट करने की, उसको विनष्ट करने की चेतना उसके मन में अवश्य होनी चाहिए। और यही संदेश परंतप इस संबोधन के द्वारा दी गई है। श्री कृष्ण ने कहा कि दिव्य योग की जो परंपरा समय के साथ में लुप्त हो गई थी उस परंपरा को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। यह श्लोक भी बहुत अद्भुत एक संदेश देता है संक्षेप में कि वह जो पुरातन योग है उस पुरातन योग को मैंने अर्जुन के समक्ष यथावत रूप से पुनः प्रतिपादित किया है। हे अर्जुन, वह योग जो समय के अनेक उपघातों के बीच में लुप्त हो गया था उस योग को आज तुम्हारे माध्यम से पुनः प्रकट किया गया है। यह योग पुरातन है, समय की कठोर चक्की कठोर क्षमता के रूप में संरक्षित है, सुरक्षित है, परीक्षित है और इसलिए उसका महत्व निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं और कहते हैं, तुम मेरे भक्त भी हो तथा सखा भी। इन दो शब्दों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है और यह बताता है कि जीवन में जिस किसी को भी यदि किसी व्यक्ति से शिक्षा या दीक्षा प्राप्त करनी हो तो वह भक्त और सखा इन दो रूपों का यदि समन्वित चेतना प्राप्त कर लेता है तो उसे गुरु अपना जो गंभीर रहस्य उसे प्रदान कर देता है। भगवत कृपा प्राप्त करने की आकांक्षा यदि है उसे भक्त भी बनना पड़ेगा और साथ साथ में ईश्वर का अत्यंत सामीप्य प्राप्त करना है तो भक्त के साथ में मित्र भी बनना होता है। इसलिए जब तुम भक्त और सखा साथ साथ में बन गए हो तो मैं तुम्हें यह गंभीर रहस्यपूर्ण योग यहाँ पर प्रदान कर रहा हूँ। भारत की ज्ञान परंपरा में हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने, चाहे वे गौतम बुद्ध हों, चाहे महावीर या शंकराचार्य हों, या रामानुज या स्वामी दयानंद सरस्वती हों, सभी ने अपनी प्राचीन परंपराओं को बताने का साहस किया है। आवश्यक यह नहीं है कि आप सर्वथा नवीन करें। आखिर व्यक्ति में सर्वथा नवीन करने का सामर्थ्य हो भी कहाँ से सकता है, परंतु अपेक्षित यह है कि जो पुरातन का गौरव हमारे बीच में सुरक्षित रहा है उसे हम नई पीढ़ी के साथ में निरंतर जोड़ते रहें। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि पुरातन के अंदर जो दिव्यता है, सदियों के द्वारा जो परीक्षित विषय होता है, वह विषय हमारे लिए ग्राह्य भी होता है और अनुकरणीय भी। इस श्लोक को सुनने के बाद में अर्जुन के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है और वह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन पूछ लेते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। इस प्रश्न को समझने के लिए हमारे सामने दर्शन की एक फिलोसॉफी, एक दर्शन की परंपरा हमारे सामने आती है। वे कहते हैं कि यह जो जन्म है वह तो बाद का है, और जिसको आप उपदेश देने की चर्चा कर रहे हैं विवस्वान को, वह विवस्वान का इतिहास तो बहुत प्राचीन है। फिर यह समझ पाना कि आपने ही विवस्वान को ज्ञान का उपदेश दिया, योग का उपदेश दिया, इस तथ्य को कैसे समझा जा सकता है और इस पर विश्वास भी कैसे किया जा सकता है? क्योंकि यह प्रश्न इस रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में है वह अतीत के उस गहरे पृष्ठों को जान सके, इसके लिए आखिर कौन सी ज्ञान साधना है? यहाँ पर यह तथ्य अवश्य समझने का है कि अर्जुन श्री कृष्ण को उस रूप में नहीं देख पा रहे हैं जिस रूप में वर्तमान समय में हम भगवान के रूप में देखते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ में एक सखा, एक मित्र और एक भक्त के रूप में खड़े हैं। इसलिए वो प्रश्न करते हैं कि आखिर आप यह किस दावे के साथ में, किस विश्वास के साथ में कह रहे हैं कि आपने ही उस ज्ञान का उपदेश दिया? तो इस प्रश्न के साथ में यह प्रश्न का उत्तर जो है वह अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। श्रोताओं, गीता संदेश में आज आपने प्रथम चार श्लोकों की व्याख्या सुनी।
3: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश, जिसके अंतर्गत आप अध्याय चार के श्लोक संख्या 1-4 तक की व्याख्या आपने सुनी। व्याख्याकार थे डॉक्टर रामचंद्र। 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम अन्नदाता।

कार्यक्रम अनदाता सुन लिए सब बाण भाइया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अनदाता और इसमें भाई हम बात कर रहे हैं खेती बाड़ी ना लेकर अपने पशुधन ना लेकर और भाई गिले गिले कई बार तो सरकार की जो योजना है उनके ऊपर भी चर्चा कर दे रहे हैं और भाई साथ साथ में मौसम की जानकारी और दूसरे विषय की जानकारी भाइयों गला साझा कर दे रहे हैं समय समय पर। पर भाई कई बार तूने देखा है किसान भाई जो खेती कर रहे हैं खेती के गिला गिला भाई ने सोचा है कि भाई कोई औषधीय खेती भी करी जाए। अब भाई औषधीय खेती करेंगे तो देखो भाई जो फसल हम ले रहे हैं गेहूं की ले रहे हैं धान की ले रहे हैं इनके गिला गिला अगर दूसरी फसल भी लें तो भाई देखो आमदनी बढ़ जाएगी किसान भाइयों की। तो हम तो यही कहें कि भाई खेती के साथ साथ अगर दूसरी फसल भी ले लें तो कितना बढ़िया रहेगा। जिक्र कर रहे हैं जिस तरह के भाई जो गिलोय है इसकी काश्त पर गिलोय कितना बढ़िया देखो औषधीय पौधा भी है और पौधे के रूप में यह भाई बेल है और इतनी उपयोगी है भाई कई बार तो नहीं सोचा है कि जब किसी का बुखार हो जाए और वो ना टूटे तो नहीं कहें कि भाई गिलोय का पानी पिया दें तो उससे जो है ना भाई बुखार भी टूट जाएगा। तो कितनी बढ़िया है भाई इसकी जो वनस्पति है ये तो देखो एक जंगली रूप में उगाई जाए पर नहीं देखा है कि भाई जो बाजार है इसमें कई तरह के नाम थे इसने जाना है जिस तरह गुरुबेल है या अमृता है मधुपर्णी है और भाई गुड़ुच्ची के नाम थे भी इसने जाना है। पर जो कई ग्राम भाई बेल है ना ये या बेल अगर नीम के ऊपर चढ़ रही है तो बहुत ही कारगर रहा है बहुत बढ़िया रहा है बहुत फायदेमंद रहा है। तो भाई बेल नीम वृक्ष पर बढ़ दी रहा है तो इसको नीम गिलोय कहते हैं। इसकी जो टहनियाँ हैं कई तरह जो है ना हम इसका उपयोग कर दे रहे हैं और भाई इसकी खेती ना केवल कई ग्राम व्यवसायिक रूप में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है बल्कि ये कई ग्राम भाई औषधीय रूप में भी फायदेमंद रहा है। और इसकी जो जानकारी है वो अगर माना होगी तो भाई हम इसका उपयोग अपने जीवन में कई डाल तक कर सके हैं। पर नहीं सोचे हैं कि भाई किस तरह कर सके हैं क्योंकि भाई जो इस वृक्ष की जो छाल है वो भूरी और भाई पीले पन पर जो है ना इसका रंग हुआ है इसके पत्ते आगे तक एक चूत सी आड़े हुए हैं नुकीले पर भाई जो ऋतु में छोटे छोटे फूल आवा है तो भाई फल जो है ना शीत ऋतु में आवा है और शीत ऋतु पर जो फूल आवा है तो इसकी पत्तियां और शाखाएं भाई औषधि के रूप में काम कर रहे हैं और जो भाई औषधि के रूप में काम करेगी तो भाई हमारे शरीर के लिए भी वो फायदेमंद रहेगी। तो फायदे के साथ साथ अगर हम इसने भाई सजावटी या भाई सुंदर बेल के रूप में बाग़ा में भी लगा सके हैं और इसकी ऊंचाई का जिक्र करें तो लगभग भैया 3000 मीटर की ऊंचाई तक जो है ना प्राकृतिक रूप से चढ़ जाए। इसका जो उपयोग है भाई एक तो इसकी जड़ जो है ना वमनकारी हुआ है इसका क्वाथ सांप के विष को दूर करा है कितना बढ़िया औषधि पौधा है ये। सूखे फल के पाउडर को घी या शहद में मिला के भाई एक टोनिक का काम करेगी और पीलिया जैसी या भाई जो गठिया रोग जिस भाई का हो तो भाई उसमें कितना फायदेमंद है काफ़ी लाभ पहुंचावेगा। और इसकी पत्तियां जो है प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है फास्फोरस और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है इनके पत्तों का रस जो है ना गठिया रोग में काफ़ी फायदेमंद रहा है। गिलोय सौंठ या भाई वृहित पंचमूल क्वाथ प्रसूति के ज्वर जो है ना उसमें को भी ठीक कर दे है। गिलोय रस या कुष्मांड रस मिश्री के साथ लेने तय अमल पित्त में काफ़ी लाभ रहेगा। गिलोय या स्तावरी का जो क्वाथ है भाई उसके पीने तय श्वेत पर्द रोग है उसमें काफ़ी फायदेमंद रहा है। गिलोय या ब्रह्मी लेने तय भाई दिल की जो धड़कन है उसमें भी जो है ना काफ़ी फायदेमंद रहा है। गिलोय ब्रह्मी या शंख पुष्पी चूर्ण को आंवले के साथ लेने तय जो हमारा रक्तचाप है उसको ठीक रखा है। अगर भाई हम इसकी ज़मीन की बात करें इसकी जलवायु का जिक्र करें तो भाई यह जो खेती है इसकी दोमट मिट्टी में बहुत बढ़िया हो सका है और रेतली जो बंजर है पथरीली है उस ज़मीन में भी उग सका है। इसके लिए पानी निकासी वाली जो ज़मीन है बहुत बढ़िया रहेगी। जो अक्षारीय ज़मीन है या अम्लीय है दलदल वाली ज़मीन भाई इसकी खेती के लिए इतनी बढ़िया नहीं है। ज़मीन का पीएच मान भाई 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए इसके लिए जो है ना साधारण सी बारिश भी काफ़ी बढ़िया है। अधिक ठंड और गर्म जलवायु पौधे की बढ़वार पर भाई प्रतिकूल प्रभाव डाल दे रहे हैं। खेत की तैयारी का जिक्र करें तो भाई एक बार मिट्टी पलटने वाले जो हल है उससे खेत की जुताई कर दें इसके बाद 2-3 जुताइयां ट्रैक्टर से कर दें और भाई खेत जो है ना एक सरा करके उसमें जो डले हैं सारे फोड़ के भाई एक सरी करनी है वह।
खाद का जिक्र करें तो भाई 4 तरह का 6 टन गोबर की खाद भाई प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत रहेगी। बीज की मात्रा भाई आपने जो है ना इसकी खेती जो है ना कलमों द्वारा कर सके हैं, लगभग 6-7 इंच लंबी 10,000 से लेकर 12,000 कलमें प्रति एकड़ बहुत फायदे वो बहुत रहेंगी। कलम लगाने की जो विधि रहेगी, कलमों को भाई नर्सरी में मई जून में लगावा है और 4 से 6 सप्ताह तक जड़ें निकल जाएंगी उसमें से, और लगाने से पहले कलमों को भाई रूटेक्स नामक एक हार्मोन है उससे उपचारित करना चाहिए। गिलोय की बेल दक्षिणवृत्ति कुंडल द्वारा पेड़ पर चढ़ा है और इसके लिए भाई नीम का पेड़ अति उत्तम माना जाए है। इसके अलावा जो जट्रोफा है, सहजना है, उसके द्वारा भी लगा सका है और इसमें जो है ना 1 साल के बाद इन पौधों की जो गिलोय है वो जो कलम लगाई है भाई वो चढ़नी शुरू हो जाएगी। कलम की मोटाई उंगली की तरह होनी चाहिए, जितनी मोटी कहकर भाई अपने हाथ की उंगली है इसकी इस तरह की लेनी है आपने। नीम, जट्रोफा, सहजना के जो पेड़ हैं इनके पास गिलोय की कलम फरवरी मार्च या जुलाई अगस्त में लगा सके हैं। पानी का जिक्र करें तो भाई कलम लगाने तुरंत बाद इसमें जो है ना हल्की सिंचाई कर दें, बाद में 15-20 दिन के अंतर पर भाई सिंचाई कर दें। जब कलम तय भाई लता चलनी शुरू हो जाए फिर जो है ना जरूरत के अनुसार उसमें पानी देते रहें। पौधे का संरक्षण भी बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि भाई आप देखे हैं कि अब तक गिलोय पर कीड़े या बीमारी का प्रकोप बिल्कुल नहीं पाया गया और किसी विशेष दवाई की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ती। इसकी कटाई का जिक्र करें तो भाई इसकी पत्तियां नवंबर दिसंबर में झड़नी शुरू हो जाए और इसकी बेल आसानी तय सूख दी नहीं आप देखे हैं, तो भाई बेल की कटाई भूमि की सतह तय 1 फुट ऊपर अप्रैल मई महीने में करनी चाहिए। जल्दी सुखाने के लिए बीच में तो इसको चीर कर छोटे छोटे टुकड़े में काट कर फिर सुखाना चाहिए और सुखा कर बोरियों में इसको भंडारण के रूप में कर सका है। गिलोय जितनी पुरानी होगी उतना ही इसका जो है ना लाभ रहेगा, इसके लिए 4-5 साल पुरानी बेल को जो है ना काटना चाहिए। पैदावार का जिक्र करें तो भाई 5 वर्ष के बाद एक पौधे तक लगभग 10 किलो ताजी फेल का जो है ना उत्पादन मिलेगा और 100 से 125 क्विंटल जो है ना हरी गिरोय गिलोय की जो बेल है भाई वो मिलेगी और शुष्क बेल की पैदावार लगभग 8-10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होगी और मंडी में इसका जो रेट है भाई वो लगभग 10-15 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो इसके अलावा जो सहारा देने वाले पौधे हैं उसके अतिरिक्त आय होगी। कुल मिलाकर भाई 5 साल के बाद 1 एकड़ तक लगभग 1 लाख रुपये तक की आमदनी आप कर सके हैं। तो भाई जो किसान भाई गिलोय की खेती करना चाहे तो वो आराम से करें भाई, क्योंकि भाई 5 साल में लगभग 1 लाख रुपए तक की आमदनी वो कमा सका है, क्योंकि भाई गिलोय जो है ना एक औषधीय बेल है। ये तो हमने बात करी भाई गिलोय की कास्त किस डाल आपने करनी है, और भाई मौसम का भी जिक्र कर दें, क्योंकि भाई आप देखे हैं कि गर्मी पूरी जो है ना पड़ रही है, किसान भाई देख रहे हैं, क्योंकि भाई गर्मी के मौसम में एक तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और हम तो यही जानकारी दें कि भैया ने भी जो है ना गर्मी का मौसम है जब भी जरूरत है तो तभी निकलें भाई, नहीं तो भाई घर के अंदर ही जाते रहने की कोशिश करें। तो आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और कल भाई तापमान अधिकतम रहने की संभावना है 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और कल भाई और भी कह रहा गर्मी की संभावना बढ़ रही है, तो इस करके भाई गर्मी तक बच के रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ भाई कार्यक्रम जो है ना हमारा कल ना रहेगा फोन इन, क्योंकि भाई दिन मंगलवार है, इस दिन कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भाई गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरह करनी है, और विशेषज्ञ रहेंगे हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर दीपचंद पशु चिकित्सक राजकीय पशु चिकित्सालय पबनावा से। तो भाई जो भी भाई गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल पर कोई जानकारी लेना चाहे तो भाई स्टूडियो के नंबर पर आप बात कर सके हैं, और भाई ये बात देख रहे होंगे भाई मनोरंजन की, तो आओ सुन ले पहला ये रागनी।

और भाई है ना ये तो सुनी रागनी। और भाई ईब बात कर लें आज की नसीहत में, गर्मी के मौसम में खेतों की जुताई और भाई खाली रखने का के फ़ायदा रहा है। भाई गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में कई क्रम भाई कीड़े मकोड़े जो है ना जो पैदा हुए हैं बारिश के मौसम में या फसलों के समय में, भाई अगर हम खेत की जुताई अच्छी डाल कर देंगे, जितने भी भाई कीट पतंगे हैं देखो जुताई करने पर सारे बाहर निकलेंगे। और भाई गर्मी पड़ रही है, कई करा आदमी जब इतना परेशान रहा है तो कीड़े मकोड़े का तो भाई बात के करेंगे, उनके तो भाई देखो बाहर निकलेंगे तो वो जरूर मर जाएंगे क्योंकि वो हानिकारक कीड़े कीट जो भी हैं। तो जिक्र करें हम भाई पुराने समय में जिस तरह के जो खेती बाड़ी थी कम हो रही थी, पर धीरे धीरे करके भाई एक समय ऐसा आया जब भाई हरित क्रांति इतनी आ गई कि भाई जो हमारी खेती थी उसमें भरपूर पैदावार होनी शुरू होगी। जब भाई उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया तो इसका मुख्य कारण क्या था कि एक तो भाई बढ़िया बीज लिए, अच्छी खाद गेरी और भाई सिंचाई के साधन थे भाई अच्छे बनने शुरू हो गए। और इसके गले गले जो नई समस्या जिस तरह के जो खरपतवार है या जमीन की जो ताकत है उसमें जो कमी थी या भूमिगत जो रोग है सूत्रकृमि इस तरह

0: जो समस्या भाई पैदा हो रही थी उन सब तक भी देखो निजात मिली धीरे धीरे करके। तो खेतों में जब फसल की बुआई के समय बार बार 15 सेंटीमीटर के आसपास अगर हम भाई खेत में हैरो चलावेंगे तो भाई इस यंत्र के चलाने ते जमीन के नीचे एक कड़ी जो परत बन रही है देखो वो भी खत्म हो जाएगी और जो बारिश का पानी है तो भाई वो सोखना शुरू हो जाएगा। अगर हम भाई खेत में ज़्यादा डूंगे तक एक एरो नहीं चलाएंगे ऊपरी ऊपर रखेंगे जो नीचे भाई परत बन रही है करड़ी वो ना टूटेगी तो पानी जो है ना बिल्कुल भी सोखेगी नहीं जमीन। तो इस करके भाई डूंगी या अपना एरो चलानी है। इसके गिले गिले भाई खेतों के साथ जो हमने पानी दे रहे हैं वो बाहर नहीं निकलेगा और साथ साथ में जो जमीन है उसमें जो पोषक तत्व हैं वो लाभदायक होंगे और जो कई क्रम भाई जो दूसरे जीवाणु लाभदायक हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि भाई जो खेत में जमीन रहेगी खेत की जो जमीन है उसमें पानी जो सोख रही है उसके अंदर जो हमारे जो मित्र कीट हैं वो ही रहेंगे और भाई देखो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ावा है। तो इस करके भाई कई बार दिक्कत भी आ जाए तो गर्मी के मौसम में जुताई आपने कद करनी है। एक तो जब रबी की फसल की कटाई का मुख्य काम जब मार्च के अंतिम सप्ताह या कई क्रम भाई निकाले कि जब कणक की कटाई पूरी हो लें उसके बाद भाई खरीफ की फसल की बिजाई की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले हमने अपनी ज़मीन को जिस तरह के जून का महीना है या जुलाई का महीना है उसमें जब जुताई आपने करनी है अच्छी डाल क्योंकि गर्मी का मौसम हुआ और तेज़ गर्मी के महीने जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं कि आजकल देखो मई चल रहा है फिर अगला महीना जून का आ जाएगा तो इससे जो है ना खेत की जो मिट्टी पलटने वाला हाल है उसे दो तीन अच्छी डाल जो है ना गहरी जुताई करनी है और 10-15 दिन के बाद भाई फिर जुताई करें खेत की और उसके बाद खेत ने खुला छोड़ दें जिस तरह मिट्टी में जो उपस्थित के क्रम भाई खरपतवार हैं या भाई कीट हैं रोगजनक कवक हैं जीवाणु हैं या सूत्रकृमि है या कड़ी धूप में भाई कई क्रम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि भाई गर्मी छोड़ने की नहीं तो मार देगी। तो इस करके भाई गर्मी के मौसम में भाई आपने जुताई बहुत ज़रूरी करनी है। तो कई क्रम भाई कद करें इसको कैसे करें तो गर्मी की जुताई मई या जून में जब रबी फसल की कटाई के बाद जब खेत खाली हो या भाई खेत में थोड़ी बहुत ही नमी हो तो तभी किसी भी मिट्टी पलटने वाले अड़ता है 15 सेंटीमीटर गहराई तक ढलान के विपरीत आपने जुताई करनी है। खेतों में हल चलाते समय भाई इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि खेत की ढलान पूर्व तय पश्चिम में हो तो भाई जुताई उत्तर तय दक्षिण की यानी कि भाई ढलान के जो है ना उल्ट करनी है आपने। ऐसा करने से भाई बहुत सारा जो बारिश का पानी है जो जमीन है वो सोख लेगी और पानी जो है ना भाई जमीन की जो निचली सतह है ओडे तक पहुंचेगा और जिस तरह जो है ना केवल भाई मिट्टी का कटाव रुकेगा बल्कि जो पोषक तत्व हैं वो भी जो है ना कम नहीं होंगे। तो ग्रीष्मकालीन जुताई के भाई कई फायदे हैं। एक तो सारे जाना है कि जो खरपतवार सभी फसलों में एक जटिल समस्या पैदा कर रहे हैं जिसके कारण भाई जो खेती का उत्पादन है 20-60% तक उसमें कमी आ जाए जिस तरह दूब है घास के रूप में भाई मोथा है या काशनी है इस तरह के ऐसे खरपतवार हैं जिनकी जड़ें भाई जमीन में काफ़ी गहराई तक जाए हैं और सामान्य जो निराई गुड़ाई है इससे बिल्कुल भी नष्ट नहीं होंगे जबकि जो ग्रीष्मकालीन जुताई है करने से पूरी तरह जो है ना ये खत्म हो सके हैं। और गर्मी के मौसम में जो जुताई करनी है अधिकतर जमीन जो है ना भाई काफ़ी सख्त हो है उसकी परत टूट जाएगी और जिस तरह बारिश का जो पानी है वो जमीन सोख लेगी और जिस तरह जल का जो संरक्षण है भाई और जो भूमिगत जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ग्रीष्मकालीन जुताई करने के बाद भाई हानिकारक कीट या फसल के जो रोगाणु भूमि की सतह के ऊपर आ जाए जो सूरज के कई ग्राम भाई तपनता है और जमीन की जो गर्मी के कारण वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो इस करके भाई आजकल आप देखे हैं तो आपने कुछ किसान भाई तो भाई कई ग्राम आजकल जमीन जो है ना खेत ना बाण लाग रहे हैं और कुछ भाई नहीं सोचे हैं कि भाई बारिश आ जल्दी फिर पड़ेवा करेंगे नहीं भाई पड़ेवा करके बावेंगे। तो इस करके भाई अब तो ये कहें कि भाई जिस तरह से आपका समय लगा तो आजकल जो है ना खेत को अच्छी डाल जो है ना बांधें और ताकि जो है ना जमीन में जो खरपतवार है उनका भी नियंत्रण हो सके और जमीन जो है ना भाई कई करा नरम हो जाएगी पानी सोखन लग जाएगी और फिर बढ़वार अच्छी होगी जब आप धान की फसल लेंगे। तो ये तो हमने बात करी भाई गर्मी के मौसम में खेतों की जुताई और खाली करने का के महत्व है। तो इबले भाई थोड़ा सा अंतराल इस विज्ञापन के प्रायोजक हैं यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से यह प्रस्तुत किया गया है। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और स्वास्थ्य, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह साफ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ भोजन और सुरक्षित घर पाना मुश्किल बना देता है। ज्यादा तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक, हवा में प्रदूषण और मलेरिया डेंगू जैसे रोग बढ़ते हैं, क्योंकि मच्छर नए इलाकों में फैल जाते हैं। जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवास का विनाश नई महामारियों को जन्म दे सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है गरीब लोगों और बच्चों पर, क्योंकि उनके पास इलाज की सुविधा कम होती है। क्या आप जानते हैं, 2019 में मलेरिया ने दुनिया भर में 22.9 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और लगभग 4,09,000 मौत हुई।
0: और भाई ईब जानकारी देंगे भैया ने उर्वरकों का सही चुनाव और उपयोग के बारे में। किसान भाई देखे हैं कि अपने खेत में कितनी आपने खाद गिरनी है, कितने उसमें ऐसे पोषक तत्व देने हैं जिससे जो है ना जमीन की जो ताकत है वो बढ़ेगी। कई बार किसान भाई ने देखा है कि खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से की नहीं है, इस तरह की जानकारी कई बार किसान भाई ने नहीं होती। इसके लिए के करना पड़ा है किसान भाई ने अपने जो खेत है उनके उस खेत की मिट्टी की जांच करना बड़ा जरूरी हो जाए। और भाई खेत की मिट्टी की जांच कद करावें जब आपकी फसल कट जाए। आजकल बिल्कुल मौसम है भाई जिन किसान भाइयों ने अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवानी है, भाई आजकल जो है ना अपने खेत की मिट्टी लेकर नज़दीक की जो भी प्रयोगशाला है भाई ओडा जाकर अपने मिट्टी करवा कर जांच खेत की, तो नहीं पता लग जाएगा कि उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व ज़्यादा हैं और भाई कौन से पोषक तत्व कम है। फिर उसी के हिसाब से भाई खेत में जो है ना आपने खाद देना है, उर्वरक देने हैं, ताकि भाई जो फसल है वो आपकी बढ़िया हो। तो यही बात कर रहे हैं कि भाई जो उर्वरक हैं उनका सही चुनाव आपने करना चाहिए, क्योंकि भी जो मिट्टी का प्रबंध है अगर वो नहीं होया तो भाई लगातार अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं वो तो मिट्टी पौधे के लिए जरूरी पोषक तत्वों के ऊपर निर्भर करेगी। और साथ साथ में भाई न्यू देखेंगे कि जो जिन पोषक तत्वों की जरूरत जमीन में है उनकी कमी हो जाए, तो ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए भाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और बढ़ता जा रहा है। मिट्टी में सभी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण भाई मिट्टी में जो उर्वरकों का प्रयोग किया जावे, क्योंकि भाई न्यू देखे हैं कई बार तो न्यूज सोचे हैं कि जिस तरह के जिक्र करते रहे हैं प्राकृतिक खेती का, प्राकृतिक खेती में भी भाई आपने किस तरह करनी है, उनमें कौन कौन सी खाद देवे हैं प्राकृतिक रूप से बनाई हुई और किस तरह आपने फसल लेनी है। पर भाई सही ढंग से अगर हम उन उर्वरकों का प्रयोग ना करके खेती के द्वारा भाई इनका पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा हमने अगर सही तरीके से इन्हें नहीं डाल लेंगे। तो मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई बार जो है ना भाई उर्वरक जो है ना एक कीमती साधन है, उनका उपयोग करना पड़ेगा। कई बार देखे हैं कि जो उर्वरक हैं वो एक कीमती साधन तो है, पर भाई इनकी संतुलित मात्रा का उचित समय पर समुचित विधि द्वारा फसल विशेष के लिए प्रयोग में लाना बड़ा जरूरी हो जाए, तो जिससे जो है ना इनका पूरा पूरा लाभ मिल सके इसका। और यो अनावश्यक भी है क्योंकि सही उर्वरक का चुनाव किया जाए ताकि उसकी उपयोगिता जो है ना और बढ़ जाए। उर्वरक के चुनाव के लिए अपना कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो अपने खेत के जो मिट्टी परीक्षण है वो करवाना है, जिसका जिक्र हम कर भी रहे हैं, क्योंकि भाई जमीन में जिस तत्व की कमी है उसी तत्व के द्वारा उर्वरकों का प्रयोग करके उसको पूरा कर सके हैं। अम्लीय मृदा में भाई उन नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जो भूमि पर अपना अक्षारीय प्रभाव डालें, जिस तरह के कैल्शियम नाइट्रेट है या पोटाशियम नाइट्रेट है। ऐसी मिट्टी में घुलनशील जो फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग करना जरूरी हो जाए। तो लवणीय मृदा में गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग बहुत बढ़िया रहेगा। और इस मिट्टी में अम्लीय प्रकृति वाले जो उर्वरक हैं जिस तरह के अमोनिया सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। मृदा में फास्फोरस की अत्यधिक कमी की दशा में भाई पानी में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक जिस तरह के सिंगल सुपर फास्फेट है, डबल सुपर फास्फेट या ट्रिपल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। चिकनी मृदा में जैविक खाद का प्रयोग करने से पहले भाई इसमें हवा का संचार अधिक रहेगा और इसकी भौतिक दशा में भी सुधार कर सके हैं। रेतली जमीन में पोषक तत्वों का जो कमी हो रही है उनकी संभावना ज़्यादा रहे तो इस मृदा में जैविक खाद जिस तरह के गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है, वो डालनी चाहिए। इनका प्रयोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके मिट्टी की जो जल धारण की जो ताकत है उसको बढ़ा सके हैं। खड़ी फसल पर पोषक तत्वों की जो उचित मात्रा है उसमें पानी घोलकर परणीय छिड़काव करना जरूरी हो जाए। कम अवधि वाली जो फसलों में नाइट्रेट घुलनशील और कम अवधि की फसलों में पानी में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग भाई आपने करना है। कम नमी वाली मृदा में नाइट्रेट युक्त उर्वरक या भाई सिंचाई और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा में अमोनिकल या एमाइड युक्त जो भाई उर्वरक हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो उर्वरकों का प्रयोग संतुलित रूप से करना चाहिए। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास युक्त जो उर्वरक हैं उनको भाई मिट्टी की जांच के आधार पर देने थे सभी उर्वरकों की जो उपयोगिक अक्षमता है उसको आप बढ़ा सका है। तो यह तो जिक्र करें भाई उर्वरकों का सही चुनाव आपने करना किस तरह है। और भाई जानकारी देते हैं किसान कॉल सेंटर की। किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551 और इसी के लिए भाई कार्यक्रम अन्नदाता यही संपन्न हो रहा है। सल्ले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों राम राम।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सब बण भैया नरसाले भाई की और तैक फिर राम राम कार्यक्रम ग्राम संसार। और इसमें भैया ना जानकारी भी देंगे साथ साथ में मनोरंजन भी करा रहे हैं। और भाई सबसे पहला सुनेंगे लोकगीत रागिणी और इससे पहला ले लें थोड़ा सा अंतराल। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और शिक्षा, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।
0: और भाई ईब करा दें भाइयों का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं पहला ये रागिणी।
2: यह रागिणी जो है वो निहाल दे किस्से की है।

और भाई है ना, ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे सौरभ वर्मा। और भाई चर्चा कर रहे हैं कि गर्मियां में स्वास्थ्य की देखभाल किस तरह करनी है। भाई जिक्र भी कर दे रहे हैं और आप भी देखा है, सारे जाना है कि भाई गर्मी का मौसम चल रहा है, पूरी तपत पड़ रही है, बार निकलेंगे तो देखें बाहर निकल ही नहीं जाता। 10 बजते नहीं सोचे हैं कि बस भाई बाज का गर्म ना बढ़ जा। तो इस करके भाई इस मौसम में, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर निरख सोचो कि भाई जो है ना सारे काम सवेरी सवेरी या भाई थोड़े से शाम के समय उस टाइम निबेड़ो। जमी जरूरी हो तो भाई जदी बाहर निकलो, क्योंकि भाई जो गर्मी है आजकल ज़्यादा पड़ रही है, लू लग जाएगी तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो इस करके भाई गर्मी के मौसम में आपने भाई ध्यान रखना है। एक तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई ज़्यादातर हम तो नहीं कहें कि जब आप बाहर निकलो तो भाई सिर पर कुछ न कुछ कपड़ा उड़ कर निकलो या भाई छतरी लेकर निकलो। और भाई पानी का खास ध्यान रखें, क्योंकि भाई अगर पानी

0: ज्यादातर नहीं सोचा करो कि भाई जब भी बाहर जाना हो तो भाई गिल्ला बोतल है तो पानी की बहुत बढ़िया, पर भाई जब कपड़े पहनने की बात करें तो भाई कपड़े भी ऐसे पहनो सूती, और भाई गर्मी में जो है ना खुद को अपना हाइड्रेट रखना, हल्का भोजन करना है, तेज धूप से बचाव रखना है, और पानी और भाई ताजा तरल पदार्थ का सेवन करना है। और एक बात और कह दे रहे हैं कि भाई जब आपने सोचा है कि कई बार धूप के मैं अपनी आंखें अपने आप ही बंद होने लग जाएं तो भाई चश्मे जरूर ला लें, क्योंकि थोड़ा सा बचाव ये रहेगा कि आपके तो सीधी जो है ना धूप आपकी आंखों पर ना पड़े। खान पीन का जिक्र करें तो भाई दिन में कम से कम हम तो ये कहें कि भाई 8-10 गिलास पानी के जरूर पियो। पानी की कमी तय भाई बचने के लिए आप एक तो नारियल पानी भी पी सके हैं, और भाई अगर नींबू पानी पी लें तो और भी बढ़िया। अगर भाई कड़ी तक कह रहा ना आजकल थोड़ी गामा का जिक्र करें तो भाई गामा में लासी भी बड़ी कमी मिला है, तो भाई लासी पी सका है, शिकंजवी का प्रयोग कर सका है, और भाई नींबू लेकर नींबू पानी थोड़ा सा नमक डाल कर वो भी पी सका है। और ताजे फलों का जिक्र करें तो भाई इसमें खीरा है, काकड़ी है, तरबूज है, खरबूजे हैं, या भाई और मौसमी जो फल चल रहे हैं वो आप ले सके हैं, और पानी की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो। जिस तरह तरबूज का जिक्र करें तो भाई तरबूज में खूब पानी हुआ है, तो गर्मी का मौसम है, तरबूज भी खूब मिला है, तो भाई ले सको हो और उन्हें खा सके हैं, गर्मी से बच सके हैं। और भाई एक बात हम ये कहें कि आजकल गर्मी के मौसम में चाह है जिस तरह की कॉफ़ी है थोड़ी सी कम कर दें। कई भाई सोचे हैं कि भाई चाय के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन थोड़ी पी लें, थोड़ा गर्मी का मौसम है, और क्योंकि भाई कई बार जो है ना पानी की कमी हो सका है इन चीज़ों के पीने से। तो धूप में धूप से बचाव का जिक्र है तो भाई धूप में अगर आप सारे काम हम तो कहे हैं कि भाई दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें, और क्योंकि भाई इस समय धूप सबसे तेज हुआ है, सनस्क्रीन का प्रयोग आपने करना है। घर से बाहर निकलें तो भाई 15-20 मिनट पहला अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन का इस्तेमाल आपने करना है। धूप से बचने के लिए भाई जो यूवी किरणें हैं उनसे बचने के लिए धूप के चश्मे आप पहन सको हो, हल्के कपड़े, गहरे रंग गर्मी को भाई सोखा है तो हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने बहुत बढ़िया रहेगा, और जब भाई बाहर जावा तो भाई छाता लेकर सिर पर टोपी पहन लें, दुपट्टा ओढ़ लें, जिस तरह के भाई औरतों का जिक्र करें तो सिर पर भाई कोई परना वगैरह ओढ़ लें, और चेहरे को भाई ढक कर रखें, क्योंकि जो सीधी लू है वो आपके चेहरे पर पड़ा है, तो जिससे जो है ना भाई दिक्कत रहेगी। और गर्मी के मौसम में भाई छोटे छोटे जो बदलाव है, छोटी छोटी सी आदतें आप उनको भी सुधार लें, और भीषण गर्मी में स्वास्थ्य और भाई ऊर्जावान बने रहना ये बड़ा जरूरी रहा है। तो भाई जब भी आप बाहर निकलें तो भाई एक तो थोड़ा सा शाम के समय या भाई 12 बजते पहला पहला जब निकलें, जरूरत पड़ने पर ही भाई बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, भाई लू लग जाएगी, डॉक्टर का देने पड़ेंगे पैसे, और भाई बीमारी न्यारी रहेगी। तो अपने स्वास्थ्य का भाई इस मौसम में जरूर ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें, कपड़े लत्ते का ध्यान रखें। तो ये तो हमने बात करी भाई गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल आपने किस तरह करनी है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और भाई एक जानकारी और दे दे भाई, ना लगे हाथ स्वच्छता और पर्यावरण पे। भाई स्वच्छता और पर्यावरण भाई कह रहे एक दूसरे तक गहरा संबंध है इनका, क्योंकि भाई अगर हम अपने आसपास की सफाई रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और पर्यावरण भी भाई साफ सुथरा रहेगा। कई बार सोचे हैं कि भाई गाँव में भी देखे हैं कि अपने घर के बाहर आ गए जो है ना सफाई करके पड़ोसी का नहीं सरकाते हैं, भाई हम तो क्या देखो एक तो अगर ऐसा करेंगे तो ये तो गलत तो है ही, आपस में भाई आपकी लड़ाई बच जाएगी। तो भाई आप जो है ना जब भी आपके घर का कूड़ा कचरा होगा तो आप जो है ना 2 डिब्बे लगा लें, अरे एक डिब्बे में आप सूखा कचरा डाल लें, दूसरे में भाई आप गीला कचरा डाल लें, और जब भी भाई आप बाहर जाओ आप जहाँ भी आप जो है ना गिरो इसको वहाँ इकट्ठा करके डाल दें।

या भाई जब भी कोई गाड़ी वगैरह कूड़ा कचरा लेने वाली आवे तो भाई आप उसमें डाल सके हैं, तो इससे भाई आपके भी सफाई रहेगी और पर्यावरण की सफाई रहेगी। तो स्वच्छता जो प्रथा है भाई, या जो हमारे अपशिष्ट प्रबंधन है, प्रदूषण नियंत्रण है, इनका सीधा असर पर्यावरण के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ा है। और अपने परिवेश को साफ रख कर कचरे का सही निपटान करना हम न केवल कह रहे भाई बीमारियां ते बच सके हैं, बल्कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी संतुलित रख सके हैं। स्वच्छता और पर्यावरण के बीच भाई संबंध तो बहुत है। हम तो ये कहें कि भाई स्वच्छता सुनिश्चित करने का अर्थ है केवल अपने घर या आस पड़ोस को साफ रखना नहीं, बल्कि भाई संपूर्ण पर्यावरण का संरक्षण करना है। ठोस कचरा और भाई जो अपशिष्ट जल है उसका सही उपचार करना है, निपटान भी सही करना है, क्योंकि भाई पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। अगर भाई हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा तो जिससे भाई हमें जो कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार तो भाई ये देखा है जब कई बार जहाँ कूड़े कचरे के ढेर लगे रहे हैं तो बदबू आवे, सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो इस करके भाई उसका सही निपटान भी होना चाहिए। तो इससे जो है ना सही निपटान करेंगे तो भी बीमारियों की रोकथाम भी होगी। तो जिस तरह के जो जमीन है उसमें जो है ना कई बार आसपास पड़ोस में देखा है कि भाई जो प्लास्टिक है हम कई बार उसका प्रयोग कर दे रहे हैं और वो भाई मिट्टी में दब जाए तो उसकी जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति को कम कर दे है। प्राकृतिक संसाधन है जिस तरह के पानी है, हवा है, इनको भी साफ सुथरा रखना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि भाई जो हमारी भावी पीढ़ी है उनके लिए भी बड़ा जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण में भी हमारी भूमिका महत्वपूर्ण रहा है। पर्यावरण और स्वच्छता उसको बनाए रखने के लिए भाई हमने जो है ना अपने जो दैनिक जीवन है उसमें कुछ छोटे मोटे महत्वपूर्ण कदम हमने उठाने चाहिए। एक तो प्लास्टिक का प्रयोग भाई कम करना चाहिए। कई बार हम देखा है कि जब शहर बाजार में जावा तो भाई झोला तो लेके नहीं जाते कपड़े का, नहीं सोचे हैं कि दुकान पर जावेंगे तो वहाँ से भाई जो प्लास्टिक की थैली है उसमें ही सामान ले आवेंगे, फिर क्या करेंगे भाई उस प्लास्टिक की थैली ना बाहर गिर देंगे, जिससे जो है ना दिक्कत रहेगी। एक तो पर्यावरण भी दूषित होगा, दूसरा कई बार उसमें हम जो है ना थोड़ा बहुत सामान लपेट का गिरते हैं खान पीन की चीज़, तो पशु खा ले हैं जिससे उनके पेट में चला जाए है और दिक्कत दे है। तो भाई जब भी आप बाजार में जाएं तो भाई कपड़े का या जूट का थैला लेकर जरूर जावा। कचरे का भाई आपने क्या करना है, जिस तरह के जो गिल्ला कचरा है सड़ने वाला और जो सूखा कचरा है जिसको रिसाइकल होने वाला है उसको अलग अलग भाई डस्टबिन में डालना है। पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए भाई आपने जो है ना एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावेंगे तो भाई बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई देखो मौसम भी इसके ऊपर आधारित रहेगा। ज़्यादा पेड़ लगावा तो कई क्रम भाई ज़्यादा बारिश आने की संभावनाएं रहे हैं, वायु शुद्ध रखेंगे, पर्यावरण को हरा भरा रखने में मदद करेंगे और भाई हम भी जो है ना सांस अच्छी ले सकेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो जल संरक्षण का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पानी की बर्बादी को भी रोकना है भाई, साथ साथ में जो बारिश का पानी है उसको भी हमने इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि भाई जब हम देखा है कई बार जो बारिश का पानी है जो पहाड़ी एरिया में हम देखा है तो जो पहाड़ों के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा करा जाए, जिससे जो है ना वो खेती में भी प्रयोग कर रहे हैं, साथ साथ में भी घर में भी उसका प्रयोग कर दे रहे हैं, तो भाई और कहीं डाल के जो पशुओं को भी पिला सके हैं, तो इस करके जो बारिश का पानी है भाई उसको हम इकट्ठा करके रख लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्वच्छता और पर्यावरण का भाई कई तरह संबंध तो है, पर स्वच्छता की जो स्थिति है उसमें पर्यावरण की जो स्थिति है स्वच्छ स्वस्थ रहेगी तो आम पर्यावरण की जो समस्या है ये भाई एक वैश्विक समस्या है। तो अस्वस्थता के कारण पर्यावरण पर जो है ना जोखिम पैदा हो रहा, तो नगर और ग्राम दोनों में भाई स्वच्छता के प्रति कम जागरूकता से जो है ना पर्यावरण विविध पहलू प्रभावित हुए हैं। तो भाई गांव में खासकर देखा है कि भाई जो पानी का जिक्र करें तो भाई जो गांव में आम बात है कि भाई जो पानी है वो इस तरह व्यर्थ चलता रहा है, क्योंकि भाई गलियां में भी देखा है कि भाई जो ट्यूब लगा रखे हैं या भाई जो टूंटियां हैं कई बार घरों के अंदर भी न्यूए चल दी रहे हैं, तो भाई जितनी जरूरत है पानी की उतने आपने लेना है, उसके बाद भाई जब आप गली में देखा है कोई टूंटी चल रही है तो उसको बंद कर दें, तो इससे जो है ना पानी की बर्बादी भी नहीं होगी, क्योंकि भाई पानी जो है ना व्यर्थ बहेगा तो भाई देखो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। पहले वाले तो टाइम रहे नहीं भाई जब पानी जो है ना बचा कर रखे करें थे, कुएं पते पानी लिया करें थे, तो भाई उसको इतना ही पानी लेकर आए करें थे जितने की जरूरत हो गई थी,
और भाई आजकल आप देखा है कि जो पानी जो है ना काफ़ी जो है ना व्यर्थ है, कई बार तो अपने कारा भी धोएंगे पाइप लेकर पानी गिला, जो कार धोएंगे गली में खड़ी करके, भाई मोटरसाइकिल हैं वो भी धोनी शुरू कर दे हैं। तो भाई अगर धोने हैं तो किसी बाल्टी या मग्गे गिला जो है ना आप उनको धो सके हैं, तो इससे जो है ना पानी का भी बचाव हो रहेगा और भाई आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं ताकि भाई उनको भी कोई नुकसान ना हो। तो ये तो हमने भाई बात कर ली कि स्वच्छता और पर्यावरण पर, और भाई ईब कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं भाई ये रागनी।

और भैया ने यह तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे रमेश कुमार सैनी हुए साथी। और इसी के लिए कार्यक्रम ग्राम संसार यही संपन्न हो रहा है। साले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाई और राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम जय जवान हमारे उन वीर सैनिकों को समर्पित है जो देश की रक्षा के लिए हर पल तैनात हैं, और हम आशा करते हैं कि जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है वहां हमारे सैनिक भाई, हमारे जवान भी ज़रूर होंगे। और भाई, हिंदी फिल्मी गीतों को तो हमारे सैनिक भाई बड़े चाव से सुनते हैं और आनंद उठाते हैं। तो चलिए साथियों, आपको कुछ प्यार भरे गीत सुनवाते हैं कार्यक्रम जय जवान में।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम जय जवान का ये अगला गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, और इस गीत को संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने और गीतकार हैं जयदीप साहनी, और इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम जय जवान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रचना को, कार्यक्रम जय जवान समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता।

सुनने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल। कार्यक्रम गुलदस्ता में और कुछ मदमस्त गीतों से गुलजार रहेगा आज का कार्यक्रम गुलदस्ता, और मैं आपकी दोस्त कृष्णा आपको नजर कर रही हूँ कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये पहला नगमा

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। अब लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगल
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें। एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
3: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
4: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
3: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
4: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
3: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें
4: आकाशवाणी
3: विश्वास की आवाज।
5: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता और अगला नगमा हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की मधुर सी आवाज़ में।

साथियों, कार्यक्रम गुलदस्ता में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ नए नगमों के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

रात का राहत भरा एहसास है और आप सभी से हो रही बात है। गीतों का कारवा रहेगा और होंगी ढेर सारी बातें। साथियों, फिर एक नई बात आपके साथ करने आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह एक नए विषय के साथ होती है शुरुआत कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत की। तहे दिल से स्वागत करते हैं हम अपने सभी सुनने वालों का, और आज आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को अपनी रेडियो दोस्त रचना के साथ। तो करते हैं शुरुआत कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत की।

दोस्तों कहते हैं ये दुनिया भगवान ने बनाई है और इस दुनिया के हर एक प्राणी को समान रूप से विशेषताएं भी दी हैं। चाहे कोई भी जीव देखने में छोटा हो या बड़ा लगे, पर हर एक अपनी खूबियां और विशेषताएं लेकर आता है इस जीवन में। फर्क सिर्फ नज़र और नज़रिए का होता है। दोस्तों कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज मैं कुछ पौराणिक कहानियाँ और किस्से लेकर आई हूँ अपने सभी श्रोताओं के लिए। कहानियाँ किसी महान राजा या रानी की नहीं, ना ही उनके अस्त्रों शस्त्रों की, ना ही जंगल के हाथी घोड़े या शेर की, बल्कि मैं कुछ ऐसे छोटे और साधारण जीवों की असाधारण किस्से लेकर आई हूँ जिनसे हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथ भी अछूते नहीं रहे। तो चलिए श्रोताओं आइए जानते हैं उन जीव के बारे में जो देखने में जितने छोटे हैं उनकी कहानियाँ उतनी ही हैरान कर देने वाली हैं। क्या है उनके असाधारण किस्से, कौन है वो और जीवन में हमें वो क्या संदेश देते हैं, यही जानेंगे हम आज कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में।

तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति के छोटे से और आकर्षक जीव की, जिसे कहते तो चींटी है, मगर ये होती है प्रकृति के सबसे अद्भुत और बुद्धिमान जीवों में से एक। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते हैं कि चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं और वे अपने वजन से बीस गुना भार उठाती हैं, पर दोस्तों साथ ही साथ चींटियाँ एक सामाजिक प्राणी भी हैं। चींटियों में नर चींटी, रानी चींटी और अन्य सभी चींटियों के अपने अपने काम बटे होते हैं। चींटियां संवाद करने के लिए विशेष रसायन, जिसे फेरोमोन कहा जाता है, इसी रसायन को सूंघकर वे एक दूसरे के पीछे चलती हैं और एक सीधी कतार बना लेती हैं। चींटियां एक मजबूत संगठन और अनुशासन का प्रतीक भी होती हैं, जिसका बहुत ही सुंदर उदाहरण महाभारत जैसे ग्रंथ में भी मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में शामिल होने के लिए हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जातियां जैसे खस, कुनिंद, तंगण जैसी जातियां युधिष्ठिर को भेंट स्वरूप देकर गई एक विशेष प्रकार का सोना, और इस सोने को पिपीलिका स्वर्ण कहा जाता था। अब इसमें खास बात ये थी दोस्तों कि संस्कृत में चींटियों को पिपीलिका कहा जाता है और ये पिपीलिका यानी चींटियाँ जमीन खोदकर बाहर निकालकर इकट्ठा कर देती थी एक खास प्रकार की स्वर्णिम मिट्टी, जिसे राजा युधिष्ठिर को हिमालय क्षेत्र में रहने वाले जातियों द्वारा उपहार के रूप में दिया गया। है ना दोस्तों, ये मज़ेदार किस्सा। साथ ही साथ चींटियाँ हम इंसानों को ये शिक्षा भी देती हैं कि कभी किसी के आकार को देखकर उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दिखने में छोटे लगने वाले ये जीव अपने अंदर असाधारण कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी किसी को छोटा समझने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं।

तो चलिए दोस्तों, अब इस प्यारे से गीत के बाद अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मधुमक्खी की। एक ऐसा जीव जो जितना मेहनती और कर्मठ होता है, वही सारा जीवन अपनी सह मधुमक्खियों की भलाई के लिए बिता देती है, ये मधुमक्खी। छंदोग्य उपनिषद में साधुओं और ज्ञानियों की तुलना मधुमक्खियों से की गई है। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी पार्वती का एक रूप भ्रामरी देवी भी है। कथा ये कहती है कि जब अरुणासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब माँ दुर्गा ने भंवरों और मधुमक्खियों का रूप धारण कर उनका वध किया और संसार की रक्षा की। दूसरी तरफ यह भी मान्यता है कि प्रेम के देवता कामदेव का धनुष कन्या पना है, जिसकी डोर मधुमक्खियों से ढकी हुई है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि जहाँ मधुमक्खियाँ फूलों से पराग इकट्ठा करके शहद बनाना जानती हैं, वहीं मधुमक्खियाँ मुसीबत आने पर अपने शत्रु का संहार करना भी जानती हैं। दोस्तों, मधुमक्खियाँ एक टीम वर्क की तरह अपना काम करती हैं। पहले वे फूलों का रस चूसती हैं और उस रस को दूसरी मधुमक्खी के मुंह में स्थानांतरित करती है, जिसे टॉलेक्सिस कहा जाता है। मधुमक्खियाँ इस जटिल शर्करा को साधारण शर्करा में बदल देती हैं और अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाकर रस को गाढ़ा बना देती हैं और उसे सुरक्षित रखने के लिए मोम की तरह छत्ते में भरकर रख देती है। प्रेषिताओं, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मधुमक्खियों की एक विशेष भूमिका रहती है। इसलिए दोस्तों, मधुमक्खी कोई छोटा मोटा जीव नहीं, बल्कि एक ऐसा जीव है जो संसार की असीम शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए है।

बूंद बूंद से सागर बनता, ईट ईट से महल बने, तार तार से ताना बुनती मकड़ी सुंदर चाल तने। ये पंक्तियाँ हमें बचपन से बार बार पढ़ाई जाती हैं। मकड़ी और सुंदर, ये शब्द तो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, क्योंकि मकड़ी को देखकर हम उससे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उसका रूप हमें डरावना लगता है। मगर साथियों, मकड़ी को आपने कभी जाल बुनते हुए देखा है? तब शायद आपके भी मुंह से मकड़ी के लिए सुंदर शब्द जरूर निकलेगा। मकड़ी अपने पेट के पिछले हिस्से से तरल प्रोटीन स्रावित करती है। यह तरल पदार्थ हवा के संपर्क में आकर गाढ़ा और सूखकर धागे में बदल जाता है और मकड़ी पैरों की मदद से उसे खींचकर और बुनकर अपना जाला तैयार करती है। प्रिय साथियों, मकड़ी इतिहास का भारतीय हिंदू ग्रंथों में भी विशेष स्थान रखता है। साथ ही साथ दोस्तों, मुंडक उपनिषद में मकड़ी को बहुत ही सुंदर और गहन दार्शनिक प्रतीक माना गया है। आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती मंदिर की कथा। भगवान शिव, एक मकड़ी, एक सर्प और एक हाथी से जुड़ी है, जहां मकड़ी भगवान शिव पर धूल या गंदगी ना चढ़े, इसीलिए वह मकड़ी एक छत्रनुमा जाला बनाकर भगवान शिव की भक्ति करती है और भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। तो साथियों, किसी भी जीव की योग्यता का अनुमान केवल उसकी सुंदरता से नहीं लगाया जा सकता। सुंदरता चेहरे की नहीं, बल्कि देखने वालों की आंखों में होती है। मिसाल के तौर पर आप गुलाब का पौधा ही ले लीजिए, उसमें हजारों कांटे हैं और गुलाब का फूल तो भाई सही मौसम के मुताबिक ही आता है, मगर कांटे उसमें हमेशा ही रहते हैं। फिर भी पौधा तो गुलाब का ही कहा जाता है। वैसे ही हजारों कमी होते हुए भी यदि किसी को किसी में गुण नज़र आए तो वही असली नज़र का पारखी होता है।

0: दोस्तों कार्यक्रम में फिर से लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ,
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों हम फिर से लौट चुके हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में और अब बात करते हैं एक और प्यारे से नन्हे नन्हे जीव की और आपको ले चलते हैं रामचरितमानस के उस प्रसंग की ओर जहां लंका चढ़ाई करने के लिए समुद्र में राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था। सभी वानर और अन्य जानवर राम सेतु के निर्माण में अपना अपना सहयोग दे रहे थे और वहाँ एक छोटा सा कूदता फुदकता जीव भी अपना हौसला दिखा रहा था और वो थी एक नन्ही सी प्यारी सी गिलहरी। प्रसंग ये था कि जब राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था तब गिलहरी भी छोटा सा पत्थर उठाकर सेतु की तरफ ले जा रही थी क्योंकि वह भी राम सेतु के निर्माण कार्य में अपना सहयोग देना चाहती थी और उसे छोटा सा पत्थर उठाए देख सभी वानर उसकी हंसी उड़ाने लगे। तब भगवान श्री राम ने बड़े प्यार से गिलहरी के सर पर हाथ रखा और उसकी सराहना की। तो ये थी एक छोटे से जीव की हौसले से भरी कहानी। दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर के प्रांगण में पहाड़ की चोटी पर बैठी एक गिलहरी हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा उठाए हुए दिखाई गई है जो दर्शाती है कि कार्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो मुश्किल क्यों ना हो अगर हिम्मत है हौसला है तो रास्ते खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं और मंजिल हमें गले लगा लेती है।

तो दोस्तों, अपने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखिएगा, ये दुनिया बेहद खूबसूरत है। बस नज़रिया होना चाहिए चीज़ों को देखने का। इसी सोच के साथ हम अब कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत समाप्त करने की ओर हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रचना को। नमस्कार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
4: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पाद

0: सेवाओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
4: Against the assessment of
5: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरम मुज्तबा विद द न्यूज एट

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अभी आपने गुलाम अली को फिल्म निकाह में सुना। हसरत मोहानी ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था रवि ने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बिचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे।

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निखरेंगे।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं मिला।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथोनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आप प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम चांदनी रातें।

सुहानी हो चली है रात और हमारे सुनने वाले हैं हमारे साथ। गीतों का सफ़र होगा और सफ़र ये सुहाना होगा और इस गीतों भरे सफ़र में आपके हम सफ़र बनूंगी मैं आपकी रेडियो सखी रचना। तो कार्यक्रम चांदनी रातें आप सभी में आप सभी कहते ही दिल से हम स्वागत करते हैं हम और पढ़ते हैं आपके फरमाइश जी संदेश। तो लेते हैं पहला ये मैसेज। पहला ये व्हाट्सएप संदेश हमें मिला है स्थान मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से हैं जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी,

क्षमा कीजिए, कुछ तकनीकी कारणों के कारण हम आपका संदेश आप तक नहीं पहुंचा पाए थे। तो चलिए फिर से आपका फरमाइशी संदेश ले लेते हैं। मुक्कम पोस्ट, फुल चिंचोली, तालुका पंडरपुर से है जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी और उनके चाचा चाची और पूरा मुलानी परिवार। तो लेते हैं अगला व्हाट्सएप संदेश। कार्यक्रम चांदनी रातें में अगला व्हाट्सएप संदेश हमें भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से है ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया। और अगला प्यार भरा संदेश हमें भेजा है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से है। राजस्थान से हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कहना, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से ही हैं नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, श्रीमती फुंदीबाई बागरी। और आपका अपना संदेश आपने कार्यक्रम चांदनी रात में शामिल किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला संदेश। अगला संदेश हमें मिला है प्यार भरी नमस्कार आदाब के साथ हैं ये शेरवानी स्कूल गजडुंड द्वारा उत्तर प्रदेश से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुपना अंसारी और आलिया अंसारी का। और लेते हैं प्यार भरा अगला संदेश। सप्रेम नमस्कार के साथ ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें किया है दंतरेकी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, परसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। और पढ़ते हैं अगले व्हाट्सएप संदेश को। अगले हमारे श्रोता मित्र हैं खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा और उनके पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवा कलोनी रोहतक से हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का।

प्रोग्राम में आपने अपना मैसेज हमें किया, उसका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और लेते हैं अगला मैसेज। प्यार भरी नमस्कार के साथ इन्होंने अपनी फरमाइश हमें भेजी है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। और प्यार भरे संदेशों की तरफ बढ़ते हैं आगे। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से ये प्यार भरा संदेश हमें भेजा है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर ने। आपका प्रोग्राम में शरीक होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, राधे राधे जी के साथ ये संदेश हमें भेजा है फाजिल्का पंजाब खेड़ा परिवार, फाजिल्का पंजाब से हैं खेड़ा परिवार और इनके नाम हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा और शालिनी खेड़ा। प्रोग्राम में आपने अपना व्हाट्सएप संदेश हमें भेजा, इसका तहे दिल से शुक्रिया। लेते हैं अगले व्हाट्सएप संदेश को। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से है अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक। कैथल हरियाणा से हैं मधु नायक। और बढ़ते हैं अगले व्हाट्सएप फरमाइशी संदेश की तरफ। प्यार भरी आदाब के साथ ये मैसेज हमें भेजा है मार हरा दरवाजा ईटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, असीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशव अब्बासी, सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन का। आपने हमें प्यार भरा संदेश भेजा है, उसका तहे दिल से धन्यवाद। मलियान सरधना मेरठ से हैं हमारे श्रोता मित्र, जिनके नाम हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन, सरधना मेरठ से हैं आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन। आपका भी धन्यवाद। अगला फरमाइशी संदेश हमें मिला है लोकू कॉलोनी लोहारो हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। इन्होंने हमें अपना व्हाट्सएप संदेश भेजा है और अपनी फरमाइश भी साथ ही साथ भेजी है, तो आपका प्रोग्राम में व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म साथिया से इस गीत को शब्दों में पिरोया है गुलजार ने, संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने और इस गीत को गाया है साधना सरगम ने।

श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांदी रातें। अब लेते हैं अगला फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश। प्यार भरी आदाबर्ज के साथ ये व्हाट्सएप मैसेज हमें किया है फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से हैं एम ए वसीद रोमानी। और फुलोंग निज़ामाबाद से ही हैं, फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से हैं एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोर ज़मीर, मोहम्मद फ़सी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद फुकरन, मोहम्मद ज़कीर, मोहम्मद फ़ज़ील और फुलोंग निज़ामाबाद से तेलंगाना से ही हैं अम्मे वहीद रुमानी। लेते हैं व्हाट्सएप संदेश अगला। मोदी चक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी और पढ़ते हैं अगला व्हाट्सएप संदेश। अगले हमारे श्रोता मित्र हैं अस्तुपुरा ज़िला मऊ से हैं मज़र अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। कार्यक्रम में आपने अपना मैसेज हमें भेजा, उसका तहे दिल से शुक्रिया। गांव जेवरा हिसार से ये संदेश हमें भेजा है जिनके नाम है वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण और सुरेंद्र भ्याण और मनोज भ्याण। लेते हैं अगला संदेश। दादा बाबू रोर गिरडी झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मेफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। प्यार भरी नमस्कार के साथ ये अगला संदेश पढ़ते हैं। गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। और समय भी गुजर रहा है और इससे पहले कि देर ना हो जाए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आपके अगले संदेशों को। भावी निमगांव महाराष्ट्र से ये संदेश हमें भेजा है श्रीराम गोंधली, उषा गोंधली, हर्षदा, वैष्णवी पूनम और युवराज गोंधली का। अगला फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश हमें भेजा है श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हैं पत्रकार हरिभाव बिड़वे, चिरंजीव अनिकेत सोनवने, शुभांगी श्रावण और सब अनीता बिड़वे। लेते हैं अगला संदेश। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। और अगले हमारे श्रोता मित्र हैं मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से हैं विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैशव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से हैं आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे। आदाब नमस्कार के साथ ये अगला संदेश जसपुर उत्तराखंड से हमें भेजा गया है जिनके नाम है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियास, रिफाकत मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद का। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से हैं हमारी ये श्रोता मित्र जिनके नाम हैं यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये अगला गीत।
फिल्म परदेश से ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस गीत को बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने, और इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांदी रातें और लेते हैं अगला व्हाट्सएप संदेश। अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है पदमपुर ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। और अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकूला से, चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन। अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है गांव सीली कला ज़िला यमुनानगर हरियाणा से हैं जय सिंह कंबोज, विजयंत सिंह कंबोज, रिदम निश्चित सिंह कंबोज, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरोड़ी। और मजनू का टीला से ये व्हाट्सएप संदेश है कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का। गांव नथाना पंजाब से हमें संदेश भेजा है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी और सीता और गीता ने। अगली रिक्वेस्ट हमें भेजी है असम से है एनी सॉन्ग टू रीड आउट माय नेम प्लीज आरजी जी। ओके पसंद जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेंद्र जी। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा और बाबा साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूल और पीबी कुलथे। लेते हैं अगला व्हाट्सएप संदेश जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से ये संदेश हमें भेजा है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल और हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल और संजीव बंटी जिंदल और पूरा खुशदिल परिवार। गांव मुरादगढ़ से हैं रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश व भुवेश कुमार कंबोज ने। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं विजय सिंह इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान ने। और बढ़ते हैं आगे लेते हैं अगला संदेश प्यार भरी नमस्कार के साथ एमएलबी रोड ग्वालियर से संदेश हमें भेजा है सुरेश खुराना पप्पी ने, किरण खुराना, लव्या आरव, मेघा साक्षी, आशीष, अनुज, विशु छोटू और एस के पप्पी खुराना ने। मुगलपुरा बागपत से ये हमारे श्रोता मित्र हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी। और लेते हैं अगला संदेश सादर नमस्कार के साथ ये संदेश हमें मिला है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के अन्य सभी सदस्य। गांव डागर निम्नावा जिला जिंद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। और अगली फरमाइश हमें भेजी है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं अनिल कुमार घोड़के, विशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के का।
अगला व्हाट्सएप संदेश हमें भेजा है नर्मदा पार्क मंगल बेटा से हैं मास्टर अलीम पटेल और मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल।

फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से हैं। एमए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनेद, क्षमा कीजिए, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद फुरकन, मोहम्मद ज़ाकिर और मोहम्मद फजिल। और फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से ही हैं एम ए वहीद रुमानी और उनके सभी साथी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म 1942 अलव स्टोरी से ये गीत। और इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, बोल हैं जावेद अख्तर के, और इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

दोस्तों हम फिर से लौट आए हैं कार्यक्रम चांदनी रातें में और लेते हैं आपके प्यारे प्यारे व्हाट्सएप संदेशों को। अगला संदेश पढ़ते हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, इन सभी ने हमें ये व्हाट्सएप संदेश किया है। और जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेचा, पूनम गगनेचा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। और पढ़ते हैं आगे आने वाले व्हाट्सएप संदेशों को। गोंदर करनाल से हैं किरणपाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, सरबजीत, राममूर्ति और रोशनी देवी ने हमें मैसेज किया है और अपनी फरमाइश भेजी है। एकता कॉलोनी रोहतक से हमारे श्रोता मित्र हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा ने। पढ़ते हैं अगला प्यार भरा संदेश, शिवाजी नगर वडाली देशमुख से हैं राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्राताई खोबरखेड़े और छकरीताई खोबरखेड़े जी का। खांडवी बुलढाणा से हैं दीपावली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, थिलोरी दरियापुर से हैं सुनैना पवन भोंडे और तनुज पवन भोंडे। और कस्बा बराड़ा ज़िला अम्बाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल। प्यार भरी नमस्कार के साथ ये अगला संदेश पढ़ते हैं। और भेजने वाले हैं ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। अगली फरमाइश हमें भेजी है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से है रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रदेश संघई और पूरा संघई परिवार। प्यार भरी आदाब के साथ ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है नई बस्ती गंजडू द्वारा से है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। और बढ़ते हैं अगले व्हाट्सएप संदेश की तरफ। अगली फरमाइश जिन्होंने हमें भेजी है वो है सुरेवाड़ी औरंगाबाद से हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, अंशुमन, ओवी, सुभाष सदानंद और नीरज विराज। कार्यक्रम में आपने अपना मैसेज हमें भेजा इसका तहे दिल से धन्यवाद। बंडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। लेते हैं अगला व्हाट्सएप संदेश, मोहल्ला हलवाइयाँ शेरकोट ज़िला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर का। कार्यक्रम चांदनी रातें में अगला संदेश हमें भेजा है गांव चहलदा बागपत से हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का। अगले हमारे श्रोता मित्र हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी और प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने का। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हैं सुनीता शिंदे, प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके का। अगली पसंद को शामिल करते हैं, अगली पसंद हमें भेजी है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं
रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। अगले हमारे श्रोता मित्र हैं और इन्होंने लिखा है, आरजी जी महोदय जी को प्यार भरी नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार, हम आपकी तहे दिल से स्वीकार करते हैं और लेते हैं आपका मैसेज। आपने हमें संदेश भेजा है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। अगला व्हाट्सएप संदेश हमें भेजा है प्यार भरी नमस्कार के साथ। ये संदेश हमें मिला है कुलम रोड हर गोविंद नगर नवा शहर से हैं सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और प्रीतिशा संधू और

विश्वकर्मा ने। पढ़ते हैं अगला व्हाट्सएप संदेश। अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग, तानिया नारंग का। और आप सभी ने हमें प्यार भरे ये मैसेज किए हैं, उसका आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म रहना है तेरे दिल में, फिल्म का ये गीत हम आप सभी श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुरों में भिरोया है हरीश जयराज ने और शब्दबद्ध किया है समीर ने, और इस गीत को गाया है के ने।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम चांदनी रातें में आपका फिर से स्वागत है और आपके प्यार भरे संदेश पढ़ते हैं। कलानौर से संदेश हमें भेजा है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने। और अगला संदेश हमें मिला है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं विक्रम कंडवासरा, सचिन कंडवासरा, सतीश, योगेश और युद्धव कंडवासरा। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह गिल, गुरलाल सिंह गिल, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का। और पढ़ते हैं अगले व्हाट्सएप संदेश को। अगला व्हाट्सएप संदेश हमें भेजा है गमहरिया जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से हैं मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल का। बाबरी बाजार चंदौली से हैं विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल। चकिया बाजार चंदौली से हैं सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। अगले हमारे श्रोता मित्र हैं ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदयवान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल और उनका पूरा परिवार। अगली फरमाइश हमें मिली है दीवाने रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमांश। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, नीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता का। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर और दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। लेते हैं अगले व्हाट्सएप संदेश को। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का। आप सबकी पसंद पर फिल्म इश्किया से आइए सुनते हैं इस गीत को।

फिल्म इश्किया से आप ये गीत सुन रहे हैं और इस गीत को संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने, गीतकार है गुलजार और इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान ने।

दोस्तों, कार्यक्रम चांदनी रातें में आपने अपने व्हाट्सएप मैसेज भेजे, संदेश हमें भेजे, हमारा साथ दिया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। हमेशा यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा आने वाले कार्यक्रमों में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन
3: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Bhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Bhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh